அணும் அணிக்கழையே அணுகா.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्डवाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर It deserves.
5: क्या अभी ट्रैफिक, स्ट्रेस और वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका। हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस। और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210।
3: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM। स्टे ट्यून्ड।

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sills. Call 905-946-1000 for Midland and Sills and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere. Or visit mymechanicauto.ca.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
7: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
6: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।
2: गोल्ड खरीदना

तो ये है परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। Visit AsiaGolding.com.

0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD.

0: Off-road from $172 weekly for 36 months at 4.29% APR with $5,800 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: क्या आप भी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं?
4: चलो एक ब्रेक ले लेते हैं।
3: टोरंटो सिटी जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका, हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस, और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210.

0: कर गई चुल।
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
2: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद बचत। विजिट asiagolding.com।
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस, साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स It deserves.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या अभी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो सिटी जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400. एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी समर्स कोका. हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस. और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज. कॉल टुडे एट 705-378-2210. 705-378-2210.
0: आप सुन रहे CMR at 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM. Stay tuned.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते ओनादि टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
3: You're listening to CMR at 9.com। You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR with $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca. गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: क्या आप भी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो सिटी जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस। और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210 705-378-2210।
3: Toronto, ready!
4: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी,
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
3: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या अभी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका. हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस. और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज. कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: tours around the universe. www.cmr.fm.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com। क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 4169902462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: तभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. Another Dawn clean with the Dawn Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
5: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेड टैग डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा
6: गुड आफ्टरनून शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस
7: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by McBean Dental Care, Kavya Homeo Care, Clear Optical by Varun Kanda, Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. Sri Lanka ka kehna hai ki spy chief ne 2019 Easter bombings ko direct kiya tha that killed 279 people. Open AI ne kaha, hamare paas plan hai to benefit everyone, not just a few people. And West Bank violence ko lekar US, Canada, France, Norway ne Israeli settlers per sanctions guy will hold them accountable for horrific violence. Tehran ne American Apache ko maar giraye jiske baad US ne Iran ke khilaf strikes shuru kar di hain. H-1B visa fraud ko lekar Indian American CEO facing US citizenship laws and Anthropic ne logo ke liye most powerful AI model ko open up kiya. Israeli ambassador ne India ke saath behtar rishton ko celebrate kiya aur kaha this is our finest hour and Trump ka kehna hai ki Apache helicopter ko shoot down करने पर ईरान को जवाब जरूर मिलेगा World's largest golf ball pyramid built with 19,019 balls. Russia ka kehna hai ki no Trump Vladimir Putin call has been planned. No timeline on US envoy's visit. POK mein takeoff ke waqt Pakistan army ka helicopter crash hua. All on board dead. Local samacharon mein high heat and humidity ke chalte GTA will feel like 36 degrees Celsius today. OPP officer killed in line of duty. Suspect arrested. Mississauga mein hui attempted LCBO theft mein ek vyakti ne intervene kiya. Report ke anusar, 1 in 4 kids experiencing poverty in Toronto. Durham College employee ko accused kiya gaya of luring 2 young girls in Snapchat and Reddit. Or driver arrested after rear-ending a cruiser in Mississauga. Bharatiya samacharon mein Adani Solar ranks 6th in Wood Mackenzie's Global Module Manufacturer List. Aur Maharashtra mein Pilgrims wali boat palti, 35 log sawar the, ek ki hui maut. Haryana ke Nu mein 16 saal ki ladki ka hua rape, 5 youths have been arrested, FIR darj ki gayi. Kirti Azad ne Mamata Banerjee ke crisis plan ko lekar kaha, she said, we'll fight and rebuild TMC. उत्तराखंड में एक लेपर्ड ने 55 साल की महिला पर किया हमला वाइल्ड कैट शॉट डेड गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी यूथ लीडर एंड सरपंच को शूट किया गया जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी क्रॉस करने वाले माइनर लड़के को डिटेन किया गया ही एंटर्ड फ्रॉम पीओके और काकोली घोष तृणमूल की फाउंडर मेंबर थी की ममता बैनर्जी एड इज नाउ अ रेबल. स्टडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के 80% पेशेंट्स टर्न टू गूगल आफ्टर डॉक्टर विजिट्स. एंड चीफ मिनिस्टर विजय ने स्पेशल विमेन सेफ्टी फोर्स को अनवील कर दिया है. विजय ने कहा पनिशमेंट विल बी सिवियर. प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 350 करोड़ रुपीज एलोकेट किए जाएंगे. और तकरीबन 5 साल बाद ममता बैनर्जी और सोनिया गांधी की हुई मुलाकात. जयपुर के इलीगल क्रैकडाउन गोडाउन में लगी आग, क्रैकर गोडाउन में लगी आग, 8 people हैव बीन burnt alive. Waste management scam in Karnataka. BJP alleges 10,000 crore rupees kickback. ये देश के सबसे बड़े scams में से एक होगा. पाकिस्तान की खबरों से, पाकिस्तान ने regional tensions के बीच कहा give peace a little more chance. ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर peaceful resolution की मांग की. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर ने सोमालिया से गुहार लगाई to secure swift release of पाकिस्तानी seamen held by pirates. सोमाली फॉरेन मिनिस्टर ने hostages की रिहाई पर दी अपडेट और कहा efforts लगातार जारी हैं. बलोचिस्तान के IBO में 14 आतंकी मारे गए, सैनिक शहीद हुआ. सूत्रों के अनुसार militants का plan था to attack police stations and banks. गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शंस में CEC ने फाइनल रिजल्ट्स को विदहोल्ड किया. ऑर्डर्स रीपोलिंग इन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. बहरीन के कमांडर ने रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान के रोल की तारीफ की. CDM मुनीर और बहरीन के कमांडर ने रीजनल सिक्योरिटी पर चर्चा की. गद्दाफी स्टेडियम को ICC से डीमेरिट पॉइंट हासिल हुआ आफ्टर अनसैटिस्फैक्ट्री पिच रेटिंग. एंड मुरी एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट वैन में लगी आग, 10 लोग मारे गए, 13 हुए घायल, 23 पैसेंजर्स सवार थे. अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में 26 मिलिटेंट्स मारे गए, 4 की मिलिटेंट फैसिलिटीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से, हैरी ब्रुक ने जो रूट को डीथ्रोन किया टू बिकम नंबर 1 टेस्ट बैटर इन ICC रैंकिंग्स. नाइट क्लब ब्रॉल के चलते बेन स्टोक्स में नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट एंड माइट रिटायर वेरी सून. द 6.5 फीट 125 kg रग्बी प्लेयर इज एट द सेंटर ऑफ बेन स्टोक्स नाइट क्लब रो. बेन स्टोक्स ने इनॉर्मस राउंड्स ऑफ डबल रम एंड कोक ऑर्डर किए थे बिफोर द फाइट दैट मे रूइन हिज करियर फॉरएवर. बॉलीवुड खबरों से, आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर हुआ रिलीज. इंटरनेट इज डिवाइडेड ओवर आलियाज एक्शन सीन्स. सनी डियोल की फिल्म लाहौर 1947 का नाम अब बंटवारा 1947 होगा. सनी डियोल ने फिल्म पोस्टर की फर्स्ट लुक को अनवील किया एंड द न्यू टाइटल अहेड ऑफ ऑगस्ट 14th रिलीज. एंड स्विगी ने होस्ट किया एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग ऑफ वरुण धवन्स है जवानी तो इश्क होना है फॉर ओवर 150 डिलीवरी पार्टनर्स इन मुंबई. एंड लॉकअप टू स्ट्रीम ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम 27 June. टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर एंड लक्ष्य की फिल्म लग जा गले टू रिलीज ऑन 14th May 2027. एंड कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विदाता 12th June को रिलीज होगी अलॉन्ग साइड दलजीत दोसांझ, इम्तियाज अली डायरेक्टेड मैं वापस आऊंगा. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम जरूर प्ले करेंगे एक एक करके. अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज में, इक्का राजा रानी वॉज द फिल्म, विनोद खन्ना, आयशा जुल्का एंड गोविंदा. और गीत है दिल को जरा सा आराम देंगे. दिल को आराम देना भी बड़ा जरूरी है. एंजॉय द सॉन्ग. विल बी राइट बैक.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ है, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इंसॉल्वेंसी काउंसलर, एंड जब भी आयशा जी आती हैं विद हर थ्री डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर 30 इयर्स से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी डज, इज कर्जों से आपको छुटकारा दिलवाती हैं, अलग अलग डेथ सेटलमेंट के ऑप्शन हमें प्रोवाइड करती हैं। आयशा जी का नंबर नोट करें, 416-428-2165 is the number, 416-428-2165। आयशा जी से थोड़ी सी बातचीत करते फिर अगली रिक्वेस्ट भी आपके लिए हमने लाइन अप कर दिया है। आयशा जी आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम बैंक्रप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं और मोर देन 20 ईयर्स से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ और उसमें यह है कि बेताशा क्लाइंट सब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं। और अपॉइंटमेंट्स सर ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक्स किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ आपको बताया जाता है। एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation, to know your options. aur khali hum options discuss karke consultancy nahi provide karte, hum services provide karte hain. basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. to kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured. to basically all kind of unsecured debts can be settled aur business debts ho, personal ho, iske alawa cra ke taxes hain, hst mein agar aap behind hain, aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल, ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस्ड, दे कैन प्रोवाइड यू नो दीज सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसेज होते हैं और वी आर वन ऑफ देम। और उसमें यह कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% आप समझ लें, it's really high और you know we know the right options for you. so all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. so phone number is 416-428-2165, that is 416-428-2165. thank you
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी। और एक बार मैं फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, शी नोज व्हाट ऑप्शंस टू प्रोवाइड टू यू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो अगर कर्जा आपका ऑलरेडी जो है क्रेजी लेवल्स पे पहुंच चुका है और नहीं भी पहुंचा है, कर्जा है आपके ऊपर, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, आयशा मुनव्वर जी से संपर्क करें 416-428-2165 पर। 416-428-2165 इज द नंबर। आयशा जी की तरफ से ये प्यारा सा गीत ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अबे डियोल की आवाज में, एंड द फिल्म वॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेनोरिटा, एंड व्हाट अ फिल्म। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इसका मतलब आप कुछ सिंसियरली मिस कर रहे हैं, एंड इट्स दोज फ्रेंडशिप्स जो स्कूल टाइम से शुरू होती हैं और ज़िंदगी भर आपके साथ चलती हैं, ये उन फ्रेंडशिप्स पर आधारित फिल्म है। और व्हाट एन अमेजिंग फिल्म, जोया अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, रीमा कागती ने इस फिल्म को लिखा था विद जोया अख्तर, एंड तीनों एक्टर्स की एक्टिंग बाकमाल। इन्जॉय द सॉन्ग।

0: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
1: नया इलाका और नया घर,
0: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं।
1: घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान।
0: फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
5: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
6: अजी याद है, याद है। अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
5: अजी इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
7: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
8: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन-इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
9: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 9054582222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
10: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon। Make sure please make your appointment, walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 9052061008 9052061008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters, 2897484040 2897484040।

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086 राज जोशी, नाम ही काफी।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ है। गीत संगीत का कारवां चलेगा 2 PM तक। ऑल योर रिक्वेस्ट, वी विल कीप प्लेइंग देम वन आफ्टर अनदर। आपको बता दें, आई एग्जाम्स के लिए क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन दोनों लोकेशन पर डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week। राज जी, आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको, प्यारे लिसनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
0: जी, आपको भी।
2: जी आज एक बार फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने न्यू होम इन हैमिल्टन बिनब्रुक के लिए लास्ट वीक भी दी है। उसके लिए मुझे कुछ इंक्वायरीज भी आई थी, बट आई वॉन्ट टू शेयर दैट वंस अगेन। 570,000 से आप ओन कर सकते हैं योर ओन होम। बिनब्रुक का इलाका है जो कि हैमिल्टन एयरपोर्ट के करीब है, डिजाइंड है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, फ्री होल्ड ओनरशिप जिसमें कोई मंथली फी नहीं, लोअर लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट इससे बनती है। न्यू गवर्नमेंट रिबेट जो है उसमें $130,000 ऑन योर न्यू होम विद एक्सपेंडेड HST रिबेट आप सेव कर सकते हैं। फ्री होल्ड टाउन्स हैं ये, आने वाले वीकेंड से इसका न्यू रिलीज है
0: जी।
2: और इन मॉडर्न टाउन होम्स जो कि 2-story के बने होंगे, साथ में 1-car garage, 1-car parking इन द ड्राइववे। लोकेशन जैसे मैंने पहले बताया, बिनब्रुक, हैमिल्टन एयरपोर्ट का इलाका, सिर्फ 570,000 से इसकी ओनरशिप आप पा सकते हैं। और साथ ही साथ एक फ्री होल्ड टाउन्स की अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 486,000 से इन ऑटावा। फॉक्स रन का इलाका है जिसमें अप टू 5-bedroom 3.5-bathroom के होम्स, 1-car garage से लेकर 2-car parking, साथ में फ्री होल्ड, नो मंथली फीस, रेयर यार्ड्स, न्यू ऑप्शनल मेन फ्लोर का लेआउट, फिनिश बेसमेंट भी इंक्लूडेड है। प्राइस अनबिलीवेबल, 486,000 से स्टार्टिंग, परफेक्ट टाउन होम इन ऑटावा। हमें कॉन्टैक्ट कर लें, आपको कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है साउथर्न ओंटारियो में। वी आर वर्किंग विद डजन्स ऑफ बिल्डर्स और डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में हम वर्क कर रहे हैं बिल्डर्स के साथ, और अपनी कम्युनिटी के भाई बहनों को उनके रियल एस्टेट सफर में गाइड करके उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, एंड सो मेनी थैंक्स टू आवर लिसनर्स जिन्होंने हमें इतनी जबरदस्त सपोर्ट दी ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। 647-866-1086, ये इजी नहीं होता कि शो जो है हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है और पूरे साल भर एवरी सिंगल डे ऑन एयर आना और अपडेट्स देना इन रिगार्ड्स टू प्रोजेक्ट्स, इन रिगार्ड्स टू रियल एस्टेट हैपनिंग, न्यूज़ व्यूज़ सारा कुछ जो आप करते हैं। और फर्स्ट टाइम होम बायर्स हमारे जो लिसनर्स हैं जिनको आज तक आपने इतनी हेल्प प्रोवाइड की है इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग देयर फर्स्ट होम, कॉन्डो और यू नो सेमी, व्हाटएवर दे आर इंटरेस्टेड इन, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी हियर ग्रेट फीडबैक फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू जी।
0: 647-866-1086 बाहर का तापमान 27 degrees Celsius, फील्स लाइक 28। एंड बहुत ही छोटी सी ब्रेक लेंगे स्काईलेक इमिग्रेशन से। मनन गुप्ता जी इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट के साथ हमारे साथ होंगे बहुत ही जल्द। आपके सवाल मनन जी के जवाब। आज मैं बहुत खुश हूं, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं, आज पनीर नहीं चलिए दाल में ही खुश हूं, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूं। आज कोई नाराज है उसके इस अंदाज से ही खुश हूं, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूं, जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूं। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी याद में ही खुश हूं। आने वाले कल का पता नहीं, मगर इंतजार में ही खुश हूं। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज में ही खुश हूं। जिंदगी है छोटी, हर पल में ही खुश हूं। अगर दिल को छुआ तो जवाब देना दोस्त, अगर दिल को छुआ तो जवाब देना दोस्त, वरना बिना जवाब के भी खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
4: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।
8: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
10: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040, 647-628-0040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com
0: Skylake Immigration।
2: South Asian Unlimited Radio presents Immigration Unlimited by Manan Gupta, powered by Skylake Immigration.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड ये है इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाला सेगमेंट जहां पर आपके अनलिमिटेड सवाल आते हैं, जिसमें से हम टॉप थ्री सवाल चुनते हैं और स्काईलेक इमिग्रेशन के हमारे एक्सपर्ट द नंबर वन कंपनी इन GTA इन सदर्न इंटारियो इन इंटारियो इन कैनेडा स्काईलेक इमिग्रेशन के करता धरता मनन जी से आपके सवाल डायरेक्टली पूछते हैं बिना उन्हें बताए क्या सवाल है, और वो डायरेक्टली हॉट सीट पर होते हैं इस सेगमेंट में और आपके सवालों के देते हैं जवाब खुलकर। 416-451-0040 मनन जी आपका स्वागत है।
4: गुड आफ्टरनून सनी जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स और परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल एंड आदाब, थैंक यू सो मच, हैप्पी वेडनेसडे। बुधवार का दिन आता है ना तो थोड़ी सी बेचैनी भी शुरू हो जाती है और थोड़ी सी राहत भी आती है कि वीकेंड आने वाला है, लेकिन बेचैनी इसलिए हो जाती है कि भाई 12:30 के बाद आपकी जब कॉल आनी है यू नेवर नो वो कॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या उसका यू नो नतीजे होंगे, बट आई एम श्योर थिंग्स विल गो वेल।
3: क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए हम आपको सवाल पहले नहीं बताते। मैं खुद कई बार ये जो है जितने सवाल लिस्टर्स के आते हैं उनमें से टॉप थ्री जो मुझे मतलब मेरे लिए तो रॉकेट साइंस है, कुछ सवालों के जवाब कुछ नहीं पता होता, बट आई थिंक फॉर यू यू द एक्सपर्ट, सो आपको तो हर सवाल का जवाब पता है, तो इसलिए हम आपसे सरप्राइज रखते हैं, आपको हॉट सीट पे डालते हैं।
4: लाइफ इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और सीखने का जज्बा होना चाहिए, एंड डेफिनेटली नोबडी इज फुली एक्सपर्ट ऑल द टाइम, बट ये है कि इमिग्रेशन का जो सा फील्ड है ये बहुत ही डायनामिक है, इसमें बहुत सारी चेंजेस बेस्ड अपॉन रेगुलेशन आती हैं, बेस्ड अपॉन योर ओन स्किल्स पता चलती हैं आपको, सो डेफिनेटली वी कीप आवर आईज एंड ईयर्स ऑलवेज ओपन।
3: बिल्कुल दोस्तों, कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है बस इस नंबर को आपने फीड कर लेना है मेरे कहने पर, और इसी नंबर पर आपने कॉल करना है स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040। मनन जी पहला सवाल हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं सौरभ गर्ग जी, पूछते हैं कि आई नीड टू फाइल एन ATIP रिक्वेस्ट, कैन आई पे द फी वाया इंटरैक्ट ई ट्रांसफर?
4: ओके, देखिए ATIP कौन सा है, आपने सौरभ जी का जो क्वेश्चन है अगर उन्होंने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी जिसे शॉर्ट में हम ATIP कहते हैं अगर उसके अंदर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट फाइल करनी है डेफिनेटली ही कैन डू दैट, बट एज फार एज पेइंग द फी, फीस कौन सी है वो $5 की जो बेसिक एप्लीकेशन फी होती है स्टैंडर्ड फी, वो आप आई डोंट बिलीव कि आप इंटरैक्ट ई ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड अगर आपने ऑनलाइन पे करनी है, या अगर आपने बाय पोस्ट ATIP की रिक्वेस्ट भेजनी है तो यू कैन गेट अ चेक और अ मनी ऑर्डर मेड, बट आई एम सॉरी कि इंटरैक्ट की फैसिलिटी एज ऑफ टुडे तो मेरे ध्यान में नहीं है, बट आई कैन ऑलवेज डबल चेक एंड रिवर्ट बैक थ्रू योर प्लेटफॉर्म।
3: बाकी सौरभ जी को आपके जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब मिल गया होगा। सौरभ जी 416-451-0040 पर आप इस सेगमेंट के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी लिसनर सरिता राणा जी पूछ रही हैं, सरिता जी का सवाल है कि हे मनन, आई एम अनेबल टू गेट एक्सेस टू माय डिजिटल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, प्लीज एडवाइस।
4: देखिए डिजिटल सिटीजनशिप जो उनसे सर्टिफिकेट है जिसे ई सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये आपको आपके IRCC का जो पोर्टल है, जो सिक्योर पोर्टल है, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। सो सरिता जी, आई एम नॉट श्योर कि आपकी सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी कब खत्म हुई है, और आपने ओथ सेरेमनी करने के बाद एक रिक्वायर्ड फॉर्म होता है वो IRCC को वाया ईमेल भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि वो फॉर्म भेजने के बाद ही ये डिजिटल ई सर्टिफिकेट आपके पोर्टल में जारी किया जाएगा। सो काइंडली कंप्लीट दैट प्रोसेस, और अगर आपने वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया फिर भी डिजिटल एक्सेस नहीं हो रहा तो यू कैन ऑलवेज सेंड अ टेक्निकल वेब फॉर्म टू IRCC विद अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैसेज और दे विल लुक इनटू इट एंड दे विल मेक इट हैपन एट द लास्ट रिसोर्स. अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं. 416-451-0040 इज द डायरेक्ट नंबर टू रीच अस जी.
3: बिल्कुल. एंड आखिरी सवाल है पवन सूरी जी का. पवन जी आपसे पूछ रहे हैं कि मनन जी इज IRCC स्टिल इशूइंग स्पेशल FIFA वीजा टू विजिट कैनेडा? इजंट इट अ बिट लेट नाउ? पवन जी का सवाल थोड़ा सा शायद लेट आया है.
4: पवन जी का पवन जी पहले तो आई एम हैप्पी कि आप फीफा को फॉलो कर रहे हैं. फीफा की रौनक मेला अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा. तीनों कंट्रीज में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में फीफा का बुखार इस वक्त गर्म जोशी से चढ़ रहा है. लेकिन जहां तक बात है आपके क्वेश्चन की कि कोई स्पेशल फीफा वीजा इशू हो रहा है, देखिए पहली बात तो ये कोई स्पेशल फीफा वीजा इशू था ही नहीं. कभी भी IRCC ने इस तरह का फीफा बेस्ड विजिटर वीजा इशू नहीं किया. ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ख्याली पुलाव बनाए हैं और बहुत लोगों को लूटा है, बहुत लोगों को मिसगाइड किया है और कई लोग उसके शिकार में फंसे भी हैं. IRCC ने तो इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन ये चलाया था कि हम कोई भी स्पेशल फीफा वीजा इशू नहीं कर रहे. जिन भी लोगों ने अप्लाई करना है वो रेगुलर पोर्टल्स के थ्रू विजिटर वीजा या ETA डिपेंडिंग अपॉन वो किस कंट्री से आ रहे हैं वही अप्लाई करें. और इनफैक्ट IRCC ने ये भी कहा था कि फीफा मैच की टिकट या कोई इस तरह का कोई आपके पास गोल्डन पास है वो भी आपको इंश्योर नहीं करेगा कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा. सो डेफिनेटली इस तरह की अफवाहों से बचें. और वैसे भी अब तो समय बिल्कुल निकलता जा रहा है. अगर किसी जेन्युइन विजिटर ने भी आना है फॉर वॉचिंग FIFA matches, तो आई थिंक इट इज प्रीटी लेट अगर आप स्पेशली साउथ एशिया से आ रहे हैं क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम इज प्रीटी लॉन्ग. जी
3: मनन जी, क्विकली जाने से पहले ना, ये इमिग्रेशन अनलिमिटेड सेगमेंट होता है इमिग्रेशन रिलेटेड सवाल जो हमारे लिसनर्स आपसे पूछते हैं, पर पता नहीं क्यों मंडे वाले सेगमेंट वाले कुछ सवाल हमारे लिसनर्स पूछने लग पड़ते हैं आज के सेगमेंट में. आई क्विकली आस्क यू, अगर आपने इसको नेक्स्ट मंडे के लिए डिटेल्ड तरीके से रखना है, वील डिस्कस इट ऑन मंडे. बट क्विकली सवाल है, प्रज्ञेश जी पूछ रहे हैं हमारे लिसनर कि कुसुमा की डील जो है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है कुसुमा को रीनिगोशिएट करने में या उसको फिर से रिन्यू करने में. ये खबर अभी अभी आई है. वो कहते हैं अगर मनन जी अपना कुछ टू सेंट्स इसमें देना चाहें.
4: देखिए प्रज्ञेश जी, शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो आपने नाम बताया, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइट अवे मैसेज भेजा है. नो डाउट इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर टुडे सेगमेंट, बट अगेन ट्रंप साहब जब कोई बयान देते हैं तो उसकी चर्चा कनाडा में ना हो, और खास करके कुसुमा को लेकर जो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ट्रंप थ्रेटन्स नॉट टू रिन्यू ट्रेड डील विद कनाडा एंड मैक्सिको. देखिए मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है. उनके तेवर ऑलरेडी काफी बिगड़े हुए हैं पिछले कुछ एक महीनों से. एंड आई स्टिल बिलीव कि कुसुमा इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर ऑल द थ्री कंट्रीज. ये एक अपनी डील बनाने के लिए उन्होंने एक बार फिर एक धमकी दी है, बट बिहाइंड द सीन्स वॉर लेवल की नेगोशिएशन चल रही हैं कनाडा और अमेरिका के बीच, अमेरिका और मेक्सिको के बीच, और तीनों देशों के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी मिल रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर कि एट द एंड ऑफ द टनल हमें लाइट जरूर नजर आएगी, लेकिन ये थोड़ी सी नेगोशिएशन के टैक्टिक्स हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जरूर हम सबके सामने अपनी गेम खेल रहे हैं. जी
3: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनन जी. और मैं एक बार फिर से स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर दे दूं मनन जी एंड हिज टीम, 416-451-0040, 416-451-0040. कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, दो चीजें दोस्तों याद रखनी है, स्काईलेक इमिग्रेशन मनन गुप्ता एंड 416-451-0040. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
4: थैंक यू सो मच जी, हैव अ गुड वन. नमस्ते.
3: यू टू. 416-451-0040. choleBhature.ca, वेदर चाहे जैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, बारिश हो, दिल्ली वाले छोले भटूरे यहां पर लोकल आपके लोकली आपको मिल जाएं, वो भी चार चार लोकेशन से, 2 ब्रैम्पटन, 1 वॉन, 1 मिसागा. क्या कहने, choleBhature.ca, टेक आउट डाइन ऑप्शन चारों की चारों लोकेशंस पर आपके लिए अवेलेबल है. चलिए गीत जो है किशोर कुमार साहब की आवाज में, दिलबर मेरे, फिल्माया और नन अदर देन महानायक अमिताभ बच्चन. इंजॉय, आई विल बी बैक.

0: ਖਤਰਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਟੰਡਰਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 11,000 ਪਾਉਂਡਸ ਤੱਕ ਦੀ ਟੋਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟੰਡਰਾ 4x4 ਕਰੂ ਮੈਕਸ ਡੀਆਰਡੀ ਆਫ ਰੋਡ $172 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.29% APR ਤੇ $5,800 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
1: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड बाहर का तापमान तकरीबन 27 डिग्रीज पहुंच चुका है, फील्स लाइक 28। एंड हमारे साथ काव्या होम्योकेयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपै मीता ओजा जी इज विद अस। गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपै मीता ओजा पिनाक ओजा सर्व करते हैं 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 ब्रैम्पटन से। ये मेजर इंटरसेक्शन है नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड वाला। क्लिनिक आपके कन्वीनियंस के लिए इज ओपन मंडे टू सैटरडे, 6 days a week, 10 a.m. to 6 p.m. The number to call Kavya Homeocare, 647-760-2779. And make sure that agar aap walk-in kar sakte hain, appointment bana sakte hain, aur agar dur rehte hain kahin pe, to phone par consultation ki ja sakti hai, dawai aapko ship kar di jayegi. Meeta ji se baat cheet karte hain, dekhte hain aaj kis topic par Meeta ji hum karenge discuss, kis bimari ko discuss karenge. Meeta ji, aapka swagat hai South Asian Unlimited Radio par.
2: हेलो एवरीवन, दिस इज मीता फ्रॉम काव्या होम्योकेयर। आज हम देखते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में कि वेरिकोज वेन्स क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे लेग्स में खास करके जो वेन्स हैं वो स्वॉलन, ट्विस्टेड बन जाती हैं, विजिबल बन जाती हैं, ब्लू कलर की वेन्स आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन को वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स ऑर्गन्स तक जाता है और वेन्स का काम है कि वो ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके आए। तभी वेन्स में जो है एक तरह के वाल्व होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, जिस करके जो ब्लड बॉडी में ऊपर की ओर जाएगा वो वापस नीचे ना चला जाए। अब जैसे ये वाल्व कभी वीक हो जाते हैं कोई भी कारण से, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो ब्लड है वो नीचे वेन्स में भरा रहेगा, जिस करके वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और ये जो वेन्स है वो स्वॉलन हो जाएंगी। सो ब्लू कलर की वेन्स जो है विजिबल बन जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे पहले ये लेग्स में ब्लड बनना शुरू होगा, जिस करके आपने देखा होगा ज्यादातर पैर में आपके लेग्स में जो है इस तरह की वेन्स जो है वो विजिबल बन जाती हैं। अब कई बार जो छोटी छोटी वेन्स हम चेहरे पे देखते हैं, हाथों पे देखते हैं, जिसको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है, ये जो स्पाइडर वेन्स हैं वो भी वेरिकोज वेन्स का ही एक पार्ट है। जो हेमरोइड्स हैं जिसको बवाशीर कहा जाता है, सो सिमिलरली एनल वेन्स जब इस तरह स्वॉलन हो जाती हैं, पेनफुल बन जाती है, जिसको हम पाइल्स या हेमरोइड्स कहते हैं, वो भी एक तरह की वेरिकोज वेन की ही टाइप है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये डीप वेन्स में भी हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन अंदर की जो डीप वेन्स हैं उनको मसल का सपोर्ट मिल जाता है, जिस करके वहां पे ज्यादा ये डेवलप नहीं हो सकता, प्रिवेंशन हो जाता है। जबकि हमारी सुपरफिशियल वेन है, बाहर की वेन्स हैं, उसको मसल्स का इतना सपोर्ट नहीं होता है, जिस करके आप देखेंगे कि लेग्स में भी जो बाहर की वेन्स हैं वो इस तरह विजिबल बन जाती है, वहां पे वेरिकोसिटी आ जाती है। नॉर्मली जब वेरिकोस वेन्स होती हैं तो ज्यादातर कोई कंप्लेन नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये वेन्स उन लोगों में डेवलप होती है जिनका स्टैंडिंग का जॉब है कि दिन में 8-10-12 घंटे जिनको खड़े रहना होता है, तो उनमें ये डेवलप होगी। और फिर लेडीज में खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उस करके इसकी शुरुआत हो जाती है, जो डिलीवरी के बाद कई बार सही हो जाती है, तो कई बार ये इसी तरह रहती है एंड समटाइम्स ये बढ़ने लगती है। सो कोई भी कारण जिसमें स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जैसे कि आप कह लें जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम है या यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है।

0: रहा है, तो उन लोगों में भी इस तरह की कंडीशन जो है ये डेवलप हो सकती है। वेरिकोज वेन जो है ज्यादातर कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, लेकिन जब ब्लड वहां पे भरा रहेगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाने से फिर आपको लेग क्रैम्प्स, लेग में दर्द होना शुरू हो जाता है, कड़ाले पड़ना जिसको कहते हैं, या काफ में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है, सोरनेस फील होना, पैर जैसे आपके पूरे जम गए हो, स्टिफ हो गए हो, एंड कई बार वहां पे ब्लैक डार्क डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। एंकल के आसपास, गिट्टे के अराउंड आप देखेंगे कि स्किन जो है वो ब्लैक हो गई, वहां पे खारिश शुरू हो गई, और कई बार इस तरह का एक्जिमा वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड जब वहां पे ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो उसके साथ कंडीशन सीरियस बन जाती है, आगे जाके वेन में अल्सर तक डेवलप हो सकता है, उस एरिया में अल्सर बन सकता है। सो इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट है इट्स वेरी इफेक्टिव। आप कभी भी, आपको पता चला है कि वेरिकोज वेन्स की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और ये सिम्टम्स से आप सफर कर रहे हैं, आप काव्या होम्योकेयर से हमारा कॉन्टेक्ट जो है ये जरूर कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज 6477602779। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड काव्या होम्यू केयर, गोल्ड मेडलिस्ट सोमिपा मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रल बुलेवर्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है। सो मंडे टू सैटरडे क्लिनिक इज ओपन 10 AM टू 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779। नंबर आपने रखना है याद। एंड अगला गीत जो है आप ही की रिक्वेस्ट है, प्ले करने वाले हैं आपकी ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट। जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं वी विल मेक श्योर टू प्ले ऑल ऑफ देम बाय 2 PM टुडे। एंड ये फिल्म थी सैनिक, अक्षय कुमार पर फिल्माया, कुमार सानू की आवाज़ में, मेरी वफाएं, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय करें। आते हैं वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940. मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 647-863-1940, 647-863-1940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
4: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
0: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
0: विरहा का दर्द है एक कहानी, जिसमें मिलते हैं अनगिनत निशानी. खामोश रातों में आंसू की बौछाड़, हर पल में बसी यादें पुरानी. दिल के कोने में छुपा एक दर्द, जिसे वक्त भी सह ना सके. यादों के समंदर में डूबे हम, सपनों की कसक ने फिर से हमें जकड़ सके. विरहा के बाद भी कुछ मीठा सा प्रेम का एहसास दिल में रहे. हर आहट में सुकून ढूंढते, उम्मीद के बादल में फिर से चमक रहे, फिर से चमक रहे.
9: किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्गेज दी लोड है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हूं.
10: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिद्धोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन.
9: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम.
10: इना कोल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स.
9: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम.
10: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धोव नो
9: 647-739-8710. License number M2000-3450.
11: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हैं. हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है. $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है. 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है. 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है. पिछे पानी है अते खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
2: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री. अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर. फ्रिज, अवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह. तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा. अप्लायंस टू फिक्स अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470 6474714-70. आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रही हमेशा फिट.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल स्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
3: Muskoka andar 1.5 acre te 2600 square foot di cottage sale te aayi hai. 3 bedroom, 2.5 washroom han. High end de furniture na fully furnished hai. $30,000 da generator ate 14x14 feet da pad vi baneya hai. 2 saal di navi cottage $100,000 di income generate kardi hai. 12x30 foot da deck hai, plus walkout basement vi hai. Muskoka room vi furnish kita gaya hai. Piche pani hai ate khoobsurat hai. Clubhouse ban reha hai jithe swimming pool vi hovega. Beach vi nazdeek hai. Jankari layi call Jitendra Gandham 416-265-2222 416-265-2222.
2: Welcome back friends. एक और कहानी मेरी जुबानी, बुरे की पहचान। एक राजा को जब पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका सुबह सुबह मुख देखने के बाद दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने बुलाया। दूसरे दिन राजा बहुत व्यस्त हो गया और शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने के बाद आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत की वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। Stay blessed, ladies and gentlemen. वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो हमने आप तक पहुँचाई है, पर ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हर चीज़ को जो है हम सिर्फ एक ही एंगल से देखें। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे अपने अंदर जितना भी देख लें, आपको आपका सत्य, आपका सच पता होता है और आपको पता होता है कि आप कौन हैं, क्या हैं। और कई बार जो दूसरा व्यक्ति होता है, खोट उसी में होता है। सो समटाइम्स द स्टोरीज आर वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एंड यू नो रिटन, बट वो कई बार हो सकता है कि आपके ऊपर उस तरह से नहीं अप्लाई करती है जिस तरह से वो स्टोरी बताई गई है, ऐसा भी होता है। चलिए एनीवेज, किशोर कुमार साहब और अमिताभ बच्चन एक साथ एक गीत में जब आते हैं, एग्जैक्टली नॉट ओनली ये फिल्माया और अमिताभ बच्चन फ्रॉम द मूवी शराबी जहाँ चार यार, लेकिन इसमें बच्चन साहब की भी आवाज़ है और इसमें किशोर कुमार साहब द ग्रेट की भी आवाज़ है। एंड व्हाट अ सॉन्ग इट वाज, व्हाट अ मूवी इट वाज। प्रकाश मेहरा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, जया प्रदा एंड अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ आए थे, एंड द फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

कंदीली बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी।

0: छूट गया पीना, छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया फिर दोनों ऐसे मिले ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चार्यार
1: यू आर लिस्निंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 647-863-1940 647-863-1940 वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी, एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान। सुल्तान जी हमारे साथ है, ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 905-450-2828। कई घरों की दोस्तों क्लोजिंग्स चल रही हैं और क्लोजिंग्स में सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए होती है अप्लायंस लॉन्ड्री, एंड मैं सोचता हूं कि वहीं से शुरू कर लेते हैं सुल्तान जी से। सुल्तानिक डील्स आपको आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी। आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंड और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है 2999 में। $2,000 कस्टमर सेव करेंगे। किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये, और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ 1099 का है। और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला 1499 का है। $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है। और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ। इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी, 905-450-2828 जी,
1: 905-450-2828। यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें
2: जी। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली 499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला 799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला 899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है। $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bovaird Drive West, just east of Chankuzi, on Bovaird hai ji, 905-450-2828, 905-450-2828 ji.
1: Brampton TV and Appliances. दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें Brampton TV and Appliances से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट. और जिस तरह से एक हर हफ्ते, हर महीने, हर त्योहार पर, फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही Brampton TV and Appliances को सपोर्ट करना है, बिकॉज Brampton TV and Appliances ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए. सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
2: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग. उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त. इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को. तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं. इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की, जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ $699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का. 98 इंच जो $3500 वाला सिर्फ $1999 में मिलेगा. सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1999 का, बोवेड एंड चंकूजी पे, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें. हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी.
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी. 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: पूजाहट.com। इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
7: ओ याद है पर उनु कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
6: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
8: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca। कॉल 905-458-2448।
9: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
10: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
9: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
2: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं शिवानी आपके साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो टोरंटो कनाडा का आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो। और इस खूबसूरत सी लवी डवी सी आफ्टरनून में आप सारे लिस्टर्स का तहे दिल से स्वागत है। आमिर और शिवानी के साथ चलता है ये सफर पूरे 2 बजे से 3 बजे तक, जिसमें गपशप रहती है, शेर व शायरी रहती है, आपके सुझाव रहते हैं, आपके सजेशंस रहते हैं, और साथ में हमारे स्पॉन्सर्स के बहुत जबरदस्त मैसेजेस भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। और हमसे आप किसी भी तरीके का रابطہ कायम करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं शो के हवाले से, एडवर्टाइजिंग के हवाले से, आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू रेडियो टोरंटो कनाडा।
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा, हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तोफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामुअलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस आफ्टरनून।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack.

जरा सी देर लगती है, जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, कि इसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। कोई जो ख्वाब देखो तो उसे फौरन भुला देना, कि नींदें टूट जाने में जरा सी देर लगती है। किसी को दुख कभी मत देना, और देना तो इतना सोच कर देना कि किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है। बहुत ही मोतबर हैं जिनको मोहब्बतें रास आ जाएं, कि किसी को राह बदलने में जरा सी देर लगती है। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, कि इसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है, जरा सी देर लगती है।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਸਟ।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
1: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं, या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है। RESP RRSP, ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं। कॉल कीजिए लवजोत कौर 416-877-8134। इट्स 416-877-8134।
7: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
9: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: साहब, बात जरा कारोबारी उमूर की हो जाए और तरक्की की हो जाए, कम वक्त में ज्यादा पैसा बनाने की हो जाए, और सुस्त रफ्तारी है मार्केट में जरा सी, इस सुस्त रफ्तार में तेजी से काम कैसे किया जा सकता है और पैसा कैसे बना सकते हैं आप, इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए एक ऐसी शख्सियत को साथ में शामिल किया है आज, जिनका ये कहना है कि आप एक बार मुलाकात जरूर करें, बात जरूर करें, कारोबार का करना या ना करना, बात का समझ में आना या ना आना ये सानवी बात है, ये सेकेंडरी बात है, ये बात का मामला है, लेकिन कारोबार के बारे में बातचीत करना, कारोबार के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये बहुत जरूरी है। शामिल करते हैं हसीब शेख को। वेलकम सर।
11: थैंक यू वेरी मच सर, यू सो नाइस ऑफ यू फॉर योर टाइम फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन सर।
1: सवाल सीधा ही करना चाहता हूँ मैं आज आपसे कि ये कारोबार करना क्यों जरूरी है, नौकरी क्यों नहीं?
11: सर नौकरी के साथ छोकरी के साथ रहती।
1: Oh my goodness me। ये बात वैसे आपने बड़ी आम से लफ्जों में किया लेकिन बात बहुत गहरी है, बात बहुत गहरी है कि नौकरी वाले बेचारे घर को चलाने के लिए परेशान रहते हैं ज्यादा, इज दैट राइट?
11: जी सर जी, इन्फ्लेशन कहीं और आती है और डिप्रेशन उनको हो जाता है।
1: अरे अरे अरे अरे अरे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो ट्रांजिशन है, जो स्विच करना है जॉब से कारोबार की तरफ, उससे बड़ा हिचकिचाते से रहते हैं, बड़े घबराते से रहते हैं और इतना घबराते हैं कि सारी ज़िंदगी घबराते ही चले जाते हैं और इसी वजह से वो सारी ज़िंदगी कोई कारोबार नहीं कर पाते। तो ये हेजिटेशन कैसे ख़त्म की जाए या इसको कैसे कम किया जाए?
11: जी कुछ चीज़ें इंसान के बस में होती हैं, कुछ बात इंसान के बस से बाहर होती हैं। इसके लिए हम शिवानी जी का मदद लेंगे, जो हमारी बात नहीं सुनता हम शिवानी जी को कहेंगे कि जी आप इनको समझाएं। क्योंकि शिवानी जी की बात वो मान लेंगे, हमारी नहीं मान लेंगे।
1: शेख साहब बात में दम हो, बात में दम हो तो कोई भी बात कहे तो मुझे लगता है कि वो मानी जा सकती है। यहाँ सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ शेख साहब कि आज आप बड़े शरारती से मूड में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी ताजी ताजी को बहुत बड़ी डील हुई है।
11: जी वो हमारी ये डील हुई है कि अगर मैं तंग करूंगा तो मैं घर से बाहर रहूंगा।
1: अच्छा।
11: अगर वो तंग होगी तब भी मैंने बाहर रहना।
1: आई अंडरस्टैंड दैट। ये वैसे मैं आपको बताऊं, इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी हाउस होल्ड, हर घर की यही कहानी है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान खरबूजे का ही होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई लिस्टिंग आपके पास हो, कोई कारोबार आपके पास हो जो चलता हुआ काम हो?
11: जी हमारे पास इंडियन स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट की लिस्टिंग इस वीक आई है, ये क्वींस एंड एयरपोर्ट पे है। इन्होंने ये रेस्टोरेंट लेके इसको बनाया, कंप्लीटली काम कर रहा है इस वक्त, बहुत अच्छी लोकेशन है। उसके जो मेन्यू है उसमें आप एडिट करके अपना कुलचा भटूरा नान चने जो भी लाना चाहो ला सकते हो। वंडरफुल लोकेशन क्रॉस वॉलमार्ट, 80,000 प्लस लोगों का फुटप्रिंट है उस एरिया में। इस लोकेशन को डेफिनेटली हर बंदा जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है फूड बिजनेस में है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, वो इसको नहीं छोड़ेगा। और ये आस्किंग प्राइस बहुत कम है इसकी, 339 है। डेफिनेटली वो प्राइस जो है वो नेगोशिएट भी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट में हमारे पास एक नॉन ब्रांडेड ब्रम्पटन के अंदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि रात मिडनाइट तक या उसके बाद तक भी खुलता है और इसकी बहुत अच्छी सेल है। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एवरी सिंगल पैनी तकरीबन 8,000 to 10,000 टेक होम है आफ्टर पेइंग इवन एम्प्लॉइज एंड एवरीथिंग। इस तरह का बिजनेस है। और हमारे पास एक शवरमा की फ्रेंचाइज है इन ब्रम्पटन एरिया और ये मिडनाइट तक खुली है। इसमें तकरीबन सारे खर्चे निकाल के एम्प्लॉइज की सैलरी दे के रात के 2-3 बजे तक ये खुली है और ये $15,000 के करीब अपना मंथ का बना रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो है अगर आपने फ्रेंचाइज लेनी है इसके लिए आपको मुझे कॉल करना है। लेकिन जहाँ पे आपने एक दफा मुझे कहा था कि जी कोई ऐसा बिजनेस लेके आए जो कि आज तक जो है वो सबसे सस्ता हो, तो मेरा जिंदगी का सबसे सस्ता बिजनेस जो है वो और उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है वो ये है कि $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट में वेव्स एंड शीशा का मेरे पास स्टोर है मिसिसागा में। सर $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है।
1: कितनी की इन्वेस्टमेंट है जी? 70,000 की?
11: नहीं सर जी, ना करो, 30% डिस्काउंट नहीं होता, $100,000 भी। अच्छा। $1,00,000 है। मैं अभी इतना तोतला नहीं हुआ, लाख को 70,000 दूं, 1,00,000 को 1,00,000 ही कहता हूँ।
1: मेरे ख्याल है आपके लिए तो शेख साहब लाख और 70,000 में बहुत कम फर्क है। आपको
11: जो आप कहना चाह रहे हैं ना उसमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है सर जी। ये आपने मुझे थोड़ी साबित करने की कोशिश की कि अभी तक तोतला हूं, वो नहीं।
1: शेख साहब कह रहे हैं कि अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो लाख कनेडियन डॉलर से ही कारोबार शुरू हो सकता है और इसकी मुमकिना आमदन महीने की $5,000 to $6,000 है, $5,000 to $6,000 अ मंथ। ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली $100,000। इसके अलावा इनके पास फ्रेंचाइज बिजनेस है, फ्रेंचाइज बिजनेस आप जानते हैं कि पूरी ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं, नंबर्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है, उसके ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटली इनके पास बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, गैस स्टेशंस मौजूद हैं, यहाँ पे हम सारी की सारी लिस्टिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, बट शेख साहब इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स अप टू कमर्शियल रियल एस्टेट। देयर इज ओनली वन नेम, हसीब शेख। नंबर ये मिलाएंगे आप 6479884449, 647-988-4449। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू।
11: एक मैं आपको एक मिनट एक क्वेश्चन लेना चाहता, वो एक शेर था परवीन शाकर का
1: जी,
11: मेरे हद के बच्चे जवां हो गए, याद है ना वो,
1: जी जी जी,
11: जुगनू को मांगने की करें जिद, मेरे हद के बच्चे जवान हो गए। जब आप सुबह थे ना तो हमें टाइम खुला मिलता था, लेकिन जब से शाम को आए ना आपका टाइम टाइट हो गया, हमारे हद के बच्चे जवां हो गए, मुझे वो याद आ रहा था। एनी वे, लव यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
12: और अब सुनिए वीकेंड स्पेशल लवी डवी सॉन्ग ब्रॉट टू यू बाय राइट विंडो फोर्ड्स, हाई क्वालिटी कैनेडियन मेड विद जर्मन लॉक्स एंड अमेरिकन थर्मल ग्लास, एनर्जी स्टार विंडोज एंड डोर्स। विंडोज बदलो, बिल घटाओ, बचत करके खुशियां बढ़ाओ, यानी कॉल घुमाओ 6474705909, 6474705909।

0: साहब, मोहब्बत के सितम का तो हमें अंदाजा नहीं, लेकिन हालात जो सितम इंसान पर कर रहे हैं और जो आजकल हो रहा है कनेडियन मार्केट में कि लोग पाई पाई को तरस गए हैं, सिक्के सिक्के की तलाश में हैं। तो आपको बता दें कि वही ग्रोसरी जो पहले कभी $150 में हुआ करती थी, आज वो 450 में भी पूरी नहीं होती है। हालात बड़े कशीदा हैं, बहुत मुश्किल के हैं, और ऐसी मुश्किल और परेशान घड़ी में अगर आपको गवर्नमेंट की हेल्प मिल जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए, गवर्नमेंट की ग्रांट मिल जाए, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, वो पैसा जो वापस नहीं करना है, लौटाना नहीं है, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। आज यही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा मिले तो फौरन से पहले वो पैसा ले लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे। आप जानते हैं एवरी सिंगल डे गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स पॉलिसीज वेरी थिक एंड फास्ट, इसलिए आज जो अवेलेबल है फंडिंग या ग्रांट जो वापस नहीं करनी, आपका पैसा होगा उसके लिए अप्लाई कीजिए। अभी फोन कीजिए 437-264-3175। बात करते हैं नागपाल जी से, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: वेरी मच, सभी को सलाम हमारी तरफ से।
0: बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज अगर किसी ने आपको कांटेक्ट किया, फाइनल कर लिया कि उसे ये ग्रांट लेनी है, तो ग्रांट के आने में कितना टाइम लगेगा और ये ग्रांट कहाँ आएगी, उनके अकाउंट में आएगी या कहीं और आएगी?
1: हाँ जी, सो इसमें लाइक पहले आपके पास स्टेटस होना चाहिए लाइक PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का, एंड अगर आपकी फैमिली इनकम कम है $70,000 से 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, तो ही आपको इसको फायदा है। क्रेडिट चेक इसमें होता नहीं है, गवर्नमेंट क्रेडिट चेक नहीं करती। एजुकेशन फंडिंग है जी, ये किसी और तरीके की फंडिंग नहीं है ये, और आप तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत आपको घर का खर्चा चलाने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए फंडिंग देती है। अगर आप मैरिड हैं एंड अगर आपके मैरिड विद किड्स हैं, आपको ज़्यादा फायदा है, सिंगल बंदे को फायदा नहीं है। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप मैरिड विद किड्स, आपको ज़्यादा फायदा है। 30,000 to 100,000 की फंडिंग ही होती है, जिसमें से हाफ पैसा आज की डेट में स्टार लगा के नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है, सारा का सारा पैसा क्लाइंट के खाते में जाता है।
0: राइट, बिल्कुल सही।
1: आता गवर्नमेंट एक ही टाइम पे 30 to 90 days में फंडिंग क्लाइंट के अकाउंट में आती है, सेम टाइम पे कॉलेज को कॉलेज की फीस भी गवर्नमेंट देती है।
0: वाह वाह वाह,
1: हुकूमत से तालीम भी हासिल करी, साथ में फंडिंग भी हासिल करी, जिसका पैसा क्या है, ग्रांट, जो अपने मोड़ना नहीं है, 50% पैसा इस ग्रांट। 1 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट्स कर रही है, क्यों, कोई गवर्नमेंट ने पैसे और यूक्रेन भेजने होंगे, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं 437-264-3175।
0: बिल्कुल इसी नंबर पर कॉल करना है आपको, जितनी ग्रांट मिल सकती है, जितनी जल्दी मिल सकती है ले लीजिए, आपके अकाउंट में आएगी, फ्री का पैसा है, आपकी फैमिली आपके लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। ये नंबर मिलाएं 437-264-3175। मुझे ये बताइए किस उम्र के लोग ये कर सकते हैं? कुछ लोग घरों में बैठे हैं, रिटायर हैं, कुछ लेडीज हैं बैक होम से, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, घरों में काम काज कर रही हैं। और दूसरा ये बताइए, क्या ये ऑनलाइन भी सारा सिस्टम हो सकता है?
1: हाँ जी, कोविड के बाद से ना मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखा है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, तो क्लाइंट्स भी लाइक करते हैं फुली ऑनलाइन कोर्सेज। जो कितने ही क्लाइंट्स, हम 7 years से बिजनेस में है जी, आज काम स्टार्ट नहीं करा, बाल सफेद हो गए हमारे, तो हम इतने लोगों को हेल्प कर चुके हैं।
0: नागपाल अभी पूरी तरह सफेद नहीं हुए, अभी थोड़े रहते हैं आपके सफेद होने वाले,
1: तो हाँ 30% रह गए हैं। हाँ जी, हाँ
0: जी,
1: तो इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है, हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 30 years भी है, ऐसे भी हैं जिनकी एज 75 years है, हाउस वाइफ, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड। जितनी आपकी कम इनकम है सर, कम, कोई गवर्नमेंट कर रही है, बैंक नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कर रही है, नो क्रेडिट चेक, नो सिक्योरिटी, नो कलेटरल, फंडिंग हासिल करे घर से बैठ के, 2-3 घंटे लगाए, अकाउंटिंग सीखे, मैनेजमेंट सीखे, साथ ही साथ 30,000 to 100,000 की फंडिंग मेरे नहीं, अपने अकाउंट में ट्रक गवर्नमेंट से, जिसका आधा पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स।
0: बिल्कुल सही, यहां नंबर है, ये नंबर नोट कीजिए, अभी के अभी ग्रांट के लिए अप्लाई कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे और आप इस ग्रांट से महरूम रह जाएं। डोंट डू दिस, डायल दिस नंबर 437-264-3175, ये नंबर मिलाएं। आपका कोई ऑफिस है, कोई दफ्तर है, वहाँ जाके मिल सकते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या आपकी भी कोई फीस रहती है इसमें, और अगर है तो वो कब देनी होती है?
1: देखिए जी, इसमें हमारा प्रॉपर 1,000 square feet का ऑफिस है, 6 बंदों का स्टाफ है, टिम होटल में मिलते नहीं है, 7 years से काम कर रहे हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं जी हमने 2500 दिया, 3500 दिया पुराने एजेंट को, राइट? जब वो सुनते हैं सेकंड कोर्स के लिए, राइट है, वे एनरोल हो जाते हैं, उनको पता है क्या है प्रोसेस। बट जब नए लोग सुनते हैं कार में बैठ के आपके शो को, वो सोचते होंगे भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। भाई साहब ऑफिस आइए, मैं सागर ऑफिस है हमारा 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे। हमारा प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि आज हम बोले फादर्स डे 70% ऑफ, फिर बोले इसकी वापस नहीं आएगी, फिर वीकेंड में फिर से बोले आज वीकेंड पे आ जाओ 100% ऑफ। गवर्नमेंट की पॉलिसी है आज ग्रांट्स है, एक इसमें जो नया अकेडमी की स्टार्ट हो रहा है, ग्रांट्स जीरो,
0: बिल्कुल सही। और
1: फैमिली ऑफ फाइव को 100,000 की फंडिंग आ रही है, 50,000 ग्रांट है, 50,000 लोन है, लेकिन 1 अगस्त के बाद 1 लाख का 1 लाख ही लोन है।
0: बिल्कुल सही,
1: अभी बेनिफिट है आपको, इसलिए हम इतनी अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर हमने हमारी फीस $199 से $499 अपफ्रंट नहीं है जी, वो भी आपके खाते में फंडिंग आती है तब आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, ठीक है जी? कैश हमने रखा नहीं एंड टू एंड, हम इतने प्यार से लाइक छोटे, हमें लोगों की ब्लेसिंग इतनी मिलती है। हमारे पास सिंगल मदर आते हैं, उनके आंखों में आंसू हो जाते हैं जब अपना काम उनका डन होता है।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: फिर अपने माता पिता को कराते हैं, अपने भाई बहन को कराते हैं,
0: बिल्कुल सही।
1: हम काम कर रहे हैं, 7 years से बिजनेस में है, कोई कैच नहीं है। कॉल करें, ऑफिस आए, नंबर नोट करें 4372643175 437-264-3175।
0: बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल, थैंक यू वेरी मच। मैं नंबर एक बार फिर से दे रहा हूं नागपाल जी का, 4372643175। थैंक यू वेरी मच।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ, लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Don Platinum, the better grease getter.
0: और साहब, बहुत से मसाइल हैं इस मुल्क में, इस देश में, और उन मसलों के साथ साथ जुड़ा है आपके हेल्थ का, आपकी सेहत का मसला, और उस मसले में सबसे ऊपर है आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका आपको कोई हल नहीं मिलता। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है और आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तब तो आपको बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब आप अस्पताल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टेस्ट या ये मामला तो कवर ही नहीं है ओएप की तरफ से, और उस पर बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र मौजूद हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि प्रॉब्लम चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो एक फ़ोन कॉल करके हल की जा सकती है। वेलकम करते हैं हरप्रीत कौर जी को।
6: गुड आफ्टरनून आमिर जी एंड टू ऑल माय लिसनर्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई हेल्थ इशू है, कोई मेजर हेल्थ इशू है और उनको कवरेज नहीं मिल पा रहा है, कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट।
6: जी आमिर जी, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कई बार देखने को मिलती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है भी है, कोई मेजर हेल्थ इशू आ जाता है तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाती है या क्लेम में तो प्रॉब्लम फिर आती है आपको। तो इसके लिए जो हमारे पास है एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जिन लोगों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, डायग्नोज हो चुकी है या अभी बिल्कुल भले चंगे हैं, या उनको लगता है कि माइनर चीज है, इट कुड बी पॉसिबल इन फ्यूचर, तो उनके लिए एक स्पेशल कंपनीज है जो हेल्थ इश्यू से ही डील करती है। हेल्थ इश्यूज में हम कह सकते हैं हमारे जो मेजर हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लिवर डिजीज आ जाती है, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, एपिलेप्सी है, तो ये सारी मेजर चीजें जो है इनके लिए आपको जल्दी से इंश्योरेंस नहीं मिलती है अगर किसी को डायग्नोज ऑलरेडी हो भी चुकी है। तो मेरे पास जो स्पेशल कंपनी है वो इन्हीं चीजों से डील करती है, आपकी हेल्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सब जो है आपका प्लान बनाया गया है कि आप कितने के लिए अप्रूव हो सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और सबसे मेन चीज कि जो हम राइटिंग करते हैं उसमें डिस्क्लोज करते हैं हम कि प्रॉपर जो क्लाइंट है उसको ये जो प्रॉब्लम है कितने सालों से है, कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट है, और ताकि क्लेम के टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर दे रहे हैं हरप्रीत कौर जी का, यही नंबर मिलाएंगे आप, 6473466611। जिन लोगों की उम्र जरा ज्यादा हो गई है मेरी तरह से, कुछ 70 साल के हो गए हैं वो, या कोई 71-72 के भी हो गए हैं कुछ तो बीच में, तो उनके लिए क्या कोई प्रोटेक्शन, क्या कोई इंश्योरेंस की कवरेज का इंतजाम हो सकता है?
6: जी जी आमिर जी, मैं जो ये कंपनी है हमारे पास या इसके अलावा जो दूसरी कंपनी भी है, अगर आपकी एज 70 है तो आपको टर्म 20 मतलब आप 90 इयर्स तक अपने आप को कवर कर सकते हैं, और अगर आपकी एज अप टू 75 भी हो गई है तो भी आप अपने आप को 100 इयर्स तक की कवरेज एक स्मॉल अमाउंट के साथ जो है वो कर सकते हैं। वो जो पॉसिबिलिटी है, वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि अप टू द एज 75 यू कैन गेट द इंश्योरेंस टिल द एज ऑफ 100। ये जो आपकी कवरेज होगी ये आपकी 100 इयर्स तक आपको कवर करेगी। और जहां तक की हेल्थ इश्यूज का हवाले से मैं बोल रही थी कि आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैटेगराइज्ड प्लान्स हैं। आप को चाहे जो भी मेजर हेल्थ इशू है, चाहे आप क्रिटिकल इलनेस भी आपको लेनी है कि जिसमें 26 बीमारियां ऐसी की कवरेज है जिसमें जो हमारा हेल्थ कार्ड भी कवर नहीं करता है, और वो चीज भी हम साथ में आपका प्लान बना के अकॉर्डिंग टू योर नीड एनालिसिस कंबाइन करके कॉम्बो प्लान आपको जो है बना के देते हैं। तो हेल्थ इश्यूज वाले जिनकी प्रॉब्लम है या बिल्कुल तंदुरुस्त भी जो है उनका तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लिविंग बेनिफिट्स हैं कि आप अपनी इंश्योरेंस जो है जीते जी खुद यूज कर सकते हैं विद मैक्सिमम कैश वैल्यू, जो पहले अवेलेबल नहीं थी लाइफ इंश्योरेंस में। अब जो लाइफ इंश्योरेंस में ऑप्शन आई है कैश वैल्यू, आप अपने पैसे अपने जीते जी जितना भी कैश वैल्यू बनता है आने वाले 5 सालों में 10 सालों में तो वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है तो कोई भी प्लान किसी बीमारी से रिलेटेड जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। और एक प्लस पॉइंट इसमें ऐड किया गया आमिर जी, हेल्थ इश्यूज में पहले जैसे कैंसर फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर की प्रॉब्लम है तो 10 सालों का पिछला रिकॉर्ड चेक करते थे, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो पिछला 5 सालों का चेक करते थे, तो अब वो टाइम पीरियड भी जो है वो कैंसर के लिए 5 ईयर्स हो गया है, न्यूरोलॉजी के लिए 3 ईयर्स हो गया है, तो इस तरह से उसको भी जो थोड़ा कम किया गया है ताकि इंश्योरेंस मिलने में जो है इजी हो सके क्लाइंट को। तो इसके लिए कुछ भी क्वेश्चन है किसी का क्रिटिकल इलनेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट जो है वो टिल द एज 80 तक 80 साल तक आप कवरेज ले सकते हैं 100,000 तक। और अगर आप बिल्कुल भले चंगे तंदुरुस्त रहते हैं तो 80 साल तक कोई हेल्थ इशू नहीं आता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। दो काज,
0: बिल्कुल सही,
6: इंश्योरेंस को खुद यूज करें, अब उसका पैसा आप खुद यूज करें जीते जी, और अपने क्रिटिकल इलनेस का जो है आप अमाउंट जो है वो पूरा प्रीमियम एज इट इज आप जो है टिल द एज 80 में वापस ले सकते हैं, ना पैसा जाया गया और कवरेज भी रही।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है 6473466611। नंबर दोबारा बता रहे हैं 6473466611। हरप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
6: थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू।
7: लब पे तेरे इकरार मोहब्बत शेर गजल का लगता है, शर्म से चेहरा लाल गुलाबी फूल कमल का लगता है, दिल को नजर से टकराए भी एक जमाना बीत गया, चोट मगर है इतनी ताजा हाथ सा कल का लगता है, बेखुद होकर मस्त हवाएं ऐसे कब इतराती थी, ये जादू तो हल्का हल्का उस आंचल का लगता है, हम समझे थे भूल गए हैं वो चाहत का अफसाना, आज मगर फिर दर्द सा दिल में हल्का हल्का लगता है।
8: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: साहब, मोहब्बत में भी इंसान अक्सर बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर रोड पे आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, तब भी सुध-बुध खो जाएगी, होश हवास खो बैठेंगे आप। ऐसे में वाकई कुछ सूझता नहीं है इंसान को, इसलिए ज़रूरी है कि एक नंबर हमेशा अपने पास रखें। जैसे आप अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर अपने पास रखते हैं, भाई का, बहन का, बीवी का, शौहर का, इसी तरह से मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर कि एक नंबर ये भी आपकी स्पीड डायल पर होना बहुत ज़रूरी है। वो नंबर है एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने मोर देन फुल टाइम पर्सनल इंजरी में आपको सर्विसेज दी हैं, आपको सेवाएं दी हैं। ही हैज़ बीन इनटू पर्सनल इंजरी ऑन फुल टाइम बेसिस फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तजुर्बाकार हैं, स्किलफुल हैं, आपकी ज़ुबान समझते हैं, आपका कल्चर समझते हैं, सारी स्टोरी, सारी कहानी, सारी बात जब आप इनको बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, तो आपका मसला बहुत जल्द हल होगा। बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, सैयद एम रज़ा बैरिस्टर, वेलकम सर।
1: जी तो फैल भाई, आपका और आपके लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके रेडियो पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और हम उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो फैल भाई, आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली जो भी ये पर्सनल इंजरी क्लेम्स हैं, जो लोग एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो क्लेम्स अंडर स्टैट्यूटरी एक्सीडेंट बेनिफिट्स जो कि कानून है, एज पर दैट लॉ प्रोसीड होते हैं और उस लॉ में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आती रहती हैंगी और वो चेंजेस जो है वो क्लेम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं।
0: राइट।
1: जैसे पहले 2012 से पहले जो था वो मेडिकल रिहैबिलिटेशन की लिमिट जो थी वो 150,000 थी
0: जी,
1: और कोई भी जो है वो बेनिफिट ऑप्शनल नहीं था।
0: सही,
1: यानी सब स्टैंडर्ड बेनिफिट्स थे, इनकम रिप्लेसमेंट, हाउसकीपिंग, पर्सनल केयर, डैमेज क्लोथिंग, केयर गिवर, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जो है वो चेंजेस आना शुरू हुई और मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन की लिमिट्स जो है वो 2012 के बाद जो है वो $65,000 हो गई।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और अब जो है वो July 1, 2026 से ये बजट में अप्रूव हो गया हैगा ये चेंजेस, क्योंकि जो भी चेंजेस जो है वो करनी होती हैं वो बजट प्रपोजल में सीक्रेटली मूव कर दी जाती है और वहां से बजट पास हो जाता है, उसके साथ साथ वो चेंजेस भी जो है वो लॉ में जो है वो
0: बिल्कुल ठीक
1: इंक्लूड हो जाती है।
0: बिल्कुल सही,
1: ये गवर्नमेंट का एक हथियार होता है। तो 2026 July 1st से इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो है वो काफी चेंजेस आ रही हैं और जो भी इंश्योर्ड पर्सन हैं, जो उनके भी पॉलिसी रिन्यू होगी July 1st के बाद, वो पॉलिसी जो है उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो पहले स्टैंडर्ड होते थे, अब वो ऑप्शनल किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप अगर बाय करोगे तो वो आपको एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की सूरत में मिलेगा, वरना आपको वो जो है वो नहीं मिलेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट हैगा वो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट हैगा, जो कि अभी $400 है और जो कि स्टैंडर्ड बेनिफिट हैगा, लेकिन July 1st है ये जो भी पॉलिसी रिन्यू होगी आफ्टर दैट तो ये ऑप्शनल होने जा रहा है। इसका मतलब ये हैगा कि अगर आप ऑप्शनल बाय करोगे और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हो तो आपको मिलेगा, वरना आपको जो है इनकम रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो लिहाजा आपका रेडियो जिस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सुना जा रहा है, उसके थ्रू जो है मैं आपके लिस्नर्स को ये बताना चाहूंगा, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये इनकम रिप्लेसमेंट जो है, जाहिर बात है लोग जब काम नहीं करते थे तो इनकम रिप्लेसमेंट उनको पे करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी शायद कम होती थी। लिहाजा गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज किया गया कि ये बेनिफिट जो है इसको ऑप्शनल बनाया जाए ताकि लोग जो है जो बाय करें उनको मिले, जो बाय ना करें उनको ना मिले।
0: बिल्कुल सही।
1: अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर कोई जो है किसी के पास कोई डिसेबिलिटी पॉलिसी नहीं है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी पॉलिसी, अगर वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है और वो वर्क नहीं कर सकता है तो उसके पास जो है कोई एवेन्यू नहीं होगा इनकम रिप्लेसमेंट का, अदर देन के वो जो है वो डिसेबिलिटी पे जाए, जिसको हम कहते हैं ऑन्टेरियो डिसेबिलिटी प्लान।
0: बिल्कुल ठीक।
1: यानी वो जो है वो टैक्स पेयर के खर्चे पर जो है वो जाए, जो लोग आमतौर पे जो है जो इज्जतदार लोग हैं नॉर्मली जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि वो ODSP पे जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक तरह का जो है बेसिकली एक तो आपके जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाता है, फिर ये कि आपके जो क्या कहते हैं आपके क्रेडिट वगैरह हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो भी आपको देखते हैं, URON ODSP, तो वो बहुत जो है वो सीरियस इम्प्लीकेशन क्रिएट करता है आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आपके लिस्टर से ये कहूंगा कि वेन एवर योर पॉलिसी इज रिन्यूइंग आफ्टर July 1st, बी केयरफुल, गेट द ऑप्शनल बेनिफिट्स, एटलीस्ट इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट्स। रिप्लेसमेंट वो बाय करते हैं प्रीमियम $10-15 जो है उनका ज्यादा होता है, तो आई थिंक दे शुड गो फॉर दैट बिकॉज दैट्स वर्थ बेनिफिट, you know what taking, otherwise there will be no recourse if you cannot work after the accident.
0: Bilkul
1: that's
0: thik.
1: The most important thing you should be, for example jaise Uber driver hai
0: ji,
1: agar wo jo hai wo income replacement benefit elect nahi karenge aur wo accident mein wo kaam nahi kar sakenge to unko income replacement benefit jo hai wo nahi milega.
0: Bilkul sahi.
1: So, bahut bahut jo hai ye serious implications hone ja rahi hain, iski matlab ye ke overall society pe iski bahut serious implications hone ja rahi hain कि वो लोग जो अब काम नहीं कर सकेंगे और फंस गया उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तो उनके लिए जो है वो बहुत ही फाइनेंशियल जो है वो हार्डशिप्स क्रिएट हो जाएंगी कि एक तरफ वो काम नहीं कर सकते और यू नो अगर वो ODSP पर भी जाते रहेंगे तो ODSP क्लेम जो है उसको फाइल करने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, दे डोंट वांट यू नो व्हाट टू पे यू until and unless you are completely zero.
0: बिल्कुल ठीक।
1: They don't want to pay you.
0: बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक।
1: वो जो है वो टैक्स पेयर का मनी होता है वो जाता है, they don't want to pay you until you have, you know what, nothing in your account. You are zero. आपके कोई assets नहीं है like this.
0: बिल्कुल सही।
1: We will talk further in your programs like this next time as well. तो लेकिन बहरहाल अभी के लिए ये है, be on your own guard. And by the optional benefits, particularly the income replacement benefit, कोई भी छोटा बड़ा car accident, slip and fall, trip and fall, log by Sayyed log को call करें. We are here to help you and to guide you through the process. कोई अगर आप policy ले रहे हैं, renew हो रही है, आपको advice चाहिए है, आप अपने broker को call करें, उससे advice लें. और जो है make sure whatever your correspondence with the broker, do that through email and keep a record of that.
0: बिल्कुल सही।
1: तो पहले बताएंगे कि आपके लिस्टर को कोई भी मशवरा चाहिए हो मुझे कॉल करें।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है सैयद एम रजा बैरिस्टर का, बेधड़क होके, बेडर, बेखौफ होके, पूरे एतमाद और पूरे भरोसे के साथ सैयद एम रजा बैरिस्टर को कॉल करना है। यहाँ है नंबर 416-937-5046।

The number is 416-937-5046. Syed M. Raza Barrister. Bahut shukriya sir aapke time ke liye. Thank you very much. यहाँ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है इस पैगाम के साथ कि खूबसूरत है मौसम, कोई शक नहीं, हसीं हैं रुतें, इसमें कोई शुबा नहीं, और अनमोल नायाब है साथ, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन ये जो लम्हा गुजर रहा है, ये जो वक्त बीत रहा है, जिंदगी दरअसल यही है, लम्हे मौजूद में जिंदा रहिए, आप जिंदगी से लुत्फंदोज होंगे, जिसने हर हाल में, हर रंग, हर तरंग में, हर घड़ी, हर दिक्कत में खुश रहने का राज पा लिया, उसने जिंदगी के राज को सीख लिया, जिंदगी के सबक को पढ़ लिया। खुश रहिए, ये आपके इख्तियार में है। अपना ध्यान रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूं Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. 4 बजे तक के लिए बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर हम हुए हैं हाजिर. दोस्तों, हफ्ते का आधा सफर तय हो चुका है और इसका मतलब है कि वीकेंड अब दूर नहीं है. आज का थॉट है कि जब तक कोशिश जारी है तब तक जीत की उम्मीद भी जारी है. तो एनर्जी को बनाए रखिए, फोकस को स्ट्रांग रखिए और आगे आगे आगे बढ़ते रहिए. आज के शो में भी लेकर आए हैं बॉलीवुड के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें, कई सारे मेहमानों का साथ जो आपकी नजर करेंगे डील्स एंड ऑफर्स ड्यूरिंग द शो. और आफ्टर द शो हमसे सीधे रابطہ कायम कर सकते हैं 416-569-7812 पर, 416-569-7812. और चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की आज की ताजा खबरों के साथ.
5: Sean Express न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
8: नमस्कार, Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार को पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ. हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है. हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मिसाइल हमले से सत्यबल्लो नाम के ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई. इस जहाज पर 28 लोग सवार थे जिसमें से 24 भारतीय थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 भारतीय अभी भी लापता हैं जबकि 21 को बचा लिया गया. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगला चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उनकी पार्टी लिक्विड ने बुधवार को इसकी घोषणा की. लिक्विड पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि नेतन्याहू फिर चुनाव लड़ेंगे और ईश्वर की इच्छा हुई तो जीतेंगे भी. और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित NDA बैठक में उनका सम्मान किया गया. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट जारी है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक काकोली घोष के नेतृत्व वाली TMC बागी गुट ने 19 लोकसभा सांसदों के नाम की लिस्ट जारी कर दी. इसमें ममता की करीबी माने जाने वाली जादवपुर से सांसद सायोनी घोष, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है. चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एक पैसेंजर के बीच हवा में हंगामा शुरू कर देने के कारण चर्चा में आई. यात्री ने फ्लाइट की विंडो का शीशा भी तोड़ दिया। उसने फ्लाइट क्रू के साथ बदतमीजी की। हालांकि क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को संभाला और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। भगवान राम को कथित तौर पर काल्पनिक कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए की सीनियर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। और अब खबर बॉलीवुड से। आलिया भट्ट स्टारर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर बुधवार को जारी किया गया। टीजर 1:55 का है जिसमें आलिया जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। टीजर में कहानी एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसका किरदार आलिया निभा रही हैं। उसे बचपन से ही एक खास मकसद के लिए तैयार और ट्रेन किया जाता है। टीजर में उनके पिता बॉबी देओल उन्हें अल्फा नाम के एक सीक्रेट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे भारत के अगली पीढ़ी के सैनिकों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
5: डियर स्पॉन्सर्स, फॉर फास्ट इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड राइड, गेट ऑन बोर्ड शॉन एक्सप्रेस। फॉर इन्फो कॉल 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल info@shawnmedia.com, shonmedia.com।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहां पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहां से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आए, सीखें कि हम आपको कौन

0: अंदर अंदर सीख लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा अग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, चार आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास आठ मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे, खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे, आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300 आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स $1,500
1: अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल. तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड अर्निंग आपने किसी और कारोबार से बनाई है अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी. हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है.
1: ओ वेरी नाइस. तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें.
0: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस पांच मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है. हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिसेस में होगा इस सैटरडे, आप आए जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे.
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटिफुल सी लाइफ. कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर दिस सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM. 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com. थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.
0: Thank you, G. Take care.
2: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.

0: और ईमेल info@seanmedia.com seanmedia.com.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: नोट करें दियोल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स. टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं बिफोर मिड जून 849 में वन वे दो लगेज के साथ. टोरंटो से दिल्ली दो लगेज के साथ वन वे आफ्टर मिड जून 999 में. एंड टोरंटो से दिल्ली जुलाई के महीने में जा सकते हैं $1,049 में वन वे दो लगेज के साथ. Two locations to serve you, Etobicoke and Brampton. Last minute deals are also available. They all travel 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
6: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23.
7: लाइसेंस नंबर 10394.
8: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
9: भाई चार लोकेशन तो देण सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा.
10: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज. मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने.
11: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ. ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
10: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही. मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810 416-901-2810 Midda Furniture.
12: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at
13: 647-993-4844. डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं.
14: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है.
13: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263. कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट.
15: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
16: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
17: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी Brampton ka trusted naam for residential or commercial projects.
16: Best quality, stylish designs or great pricing. Chahe sunroom ho ya ho custom canopy, sab kuch milega yahan.
17: Free quotation ke liye abhi call kare 416-831-4790. That's 416-831-4790. Ya pahuncho 24 Regan Road, Brampton.
16: California awning and canopy. Banaye aapki space sundar aur functional.
10: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
4: CMR FM 101.3 पर फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है दोस्तों, और चलते हैं देओल ट्रैवल की तरफ जहां से नवजोत हमारे साथ जुड़ेंगी लेटेस्ट डील्स के साथ. नवजोत आपका वेलकम है.
18: थैंक यू सो मच शालिनी.
4: तो क्या स्पेशल ऑफर्स हैं आज देओल ट्रैवल की तरफ से बताएं.
18: तो आज हम लेके आए हैं राउंड ट्रिप एंड वन वे बहुत सारे ऑफर्स. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी टोरंटो से बैंगलोर के लिए जो अगस्त से लेके सितंबर तक है, इवन अक्टूबर एंडिंग तक है. ये राउंड ट्रिप आपको मिल जाएगा जी $1530 में. और इसी के लिए टोरंटो से अगर आप बॉम्बे भी जाना चाहते हैं अगस्त से लेके अक्टूबर तक, तो ये आपको मिल जाएगा जी $1570 में. ये भी राउंड ट्रिप है. एंड अनदर वन इज टोरंटो टू दिल्ली, दैट्स इन द जुलाई मंथ, वन वे. अगर आप करते हो दो पैक्स के साथ, ये मिल जाएगा जी $1050 के.
4: क्या बात.
18: और हम आज लेके आए हैं बहुत सारी अमेजिंग डील जो है हमारी लंदन तक भी और पेरिस तक भी. टोरंटो से लंदन अगर डायरेक्ट फ्लाइट जाते हो आप सितंबर से अक्टूबर, आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिल रही है $920 में.
4: अमेजिंग.
18: एंड टोरंटो से पेरिस में अगर आपने जाना है डायरेक्ट फ्लाइट अभी लीजिए अगस्त से लेके सितंबर तक, वो भी सिर्फ और सिर्फ $920 में.
4: वंडरफुल.
18: अभी इस डील्स को ग्राब करने के लिए कॉन्टेक्ट करें हमारी बूथ लोकेशन पे, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन लोकेशन. हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 905-588-5100, 905-588-4200.
4: 905-588-4200 and 905-588-5100, two locations to serve you, Brampton and Etobicoke, Deol Travel. Navjot, thank you so much humse judne ke liye, phir aapse bahut jaldi judenge. All the best.
18: Thank you.
4: Okay? Take care. Bye.
10: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@shaunmedia.com, shaunmedia.com.
19: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
10: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
19: CJ Rajiv Madan. Thoughts become things.
20: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
21: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
22: Ja.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का शालिनी वेलकम करती है ऑन सीएमआर एफएम 101.3। और आप खोलते हैं बॉलीवुड के पन्ने और आज बर्थडे मना रहे हैं कैसे कलाकार जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर पार्टी का मूड हो, डांस फ्लोर गरम करना हो और एक वॉइस है जो हर बार एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। एक ऐसा नाम जो फुल ऑन स्वैग, मस्ती और हाई एनर्जी का किंग माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पार्टी हिट मशीन मीका सिंह की। इनका म्यूजिक जर्नी एकदम एनर्जेटिक रहा है। लाइव परफॉर्मेंसेस से लेकर बॉलीवुड चार्टबस्टर्स तक हर जगह उनका मैजिक चलता है। उनकी वॉइस एक बड़ी पावरफुल वॉइस है और उनका स्टाइल एकदम अलग है। मीका सिंह ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई एकदम हटके और कैची सॉन्ग से जो इंस्टेंटली हिट हो जाते हैं। और इनके सॉन्ग्स का मतलब है डांस, मस्ती और फुल ऑन एनर्जी। फेमस सिंगर दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं और बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी थी। एक सिंगर के साथ साथ ये म्यूजिक कंपोजर और परफॉर्मर भी हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स इनकी एनर्जी के लिए फेमस हैं। ऑडियंस को फुल ऑन एंगेज करके रखते हैं और इनका स्टाइल बॉलीवुड में एकदम यूनिक है। तो चलिए दोस्तों, अगला ही गाना हम डेडिकेट करते हैं मीका सिंह की आवाज में आप सभी पार्टी लवर्स के नाम, मस्ती की रेलगाड़ी पर। एंजॉय।
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: तूने कोई बसड मचा रखी है, रानी बसड मचा रखी है।
1: हो गजरा लगा के आई किस्म है, किस्म आशिक है जाने इतने रस्म।
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at
3: 647-993-4844. जी दोस्तों, हैशटैग होम से राहुल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सेप्शनली गुड अपॉर्चुनिटीज के साथ। और जितना हॉट जितना वार्म वेदर है उतनी ही वार्म जो है ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। राहुल जी वेलकम, हाउ आर यू?
4: जीशान जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
3: गुड आफ्टरनून राहुल जी, और आई नो पिछले कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा बिजी रहे क्योंकि बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम सुनना चाहते हैं उन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल।
4: जी एब्सोल्युटली, सो वी बीन बिजी एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुडंट इवन मेक इट टू द शो एंड आई अपोलोजाइज टू आवर लिसनर्स, बट आई विल बी बैक दिस वीक ऑन फ्राइडे। तो सबसे पहले एक तो हमारा यू नो हैशटैग होम्स का शो जो होता है वो इस फ्राइडे को होगा, और साथ ही साथ वी आर ब्रिंगिंग नॉट वन बट टू अपॉर्चुनिटीज, और वो दोनों अपॉर्चुनिटी साथ ही साथ हैं, बिकॉज एक तो ब्रैम्पटन में है और एक कैलेडन में। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग यू कैलेडन एंड ब्रैम्पटन। और कैलेडन के अंदर सोलमार की साइट आने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी इज सीइंग इट ऑन सोशल मीडिया। वाइल्ड फील्ड के नाम से है ये साइट, यहाँ पे फ्री होल्ड टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन होम सेमीज एंड डिटैच आने वाले हैं, एंड दे आर गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 700, एंड अगेन मिड 700 से यहाँ पे ये साइट पे शुरू होने वाले हैं फॉर टाउन्स, मिड 800 से आपके सेमीज और मिड 900 से आपके शुरू होंगे डिटैच होम्स यहाँ पे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, दे आर नॉट स्मॉल टाउन होम गाइस, दे आर वाइड लॉट्स एंड they are going to be fabulous. These are meant for you know, having large families as well, so there's different models available, jaise maine bataya, aur sath hi sath you know there's a lot of incentives which I cannot say it on the radio right now, but agar hamare listeners mujhe call karenge so obviously I can share those further details. Aur is project ka jo launch hai wo hone ja raha hai June 17th ko, so 17 June ko iska launch hai, aur yahan pe already bahut zyada demand aane wali hai phase 1 ke liye. Aur jo ye puri site hai Shalini ji, this is going to be about 2500 homes together, so 2500 homes yahan pe banne wale hain. And again nice. These are freehold, no parlor fees, nothing. Traditional hai, two stories hai, backyard ke sath hai, so whether aap town home dekhna chahte hain, aap semis dekhna chahte hain ya detached dekhna chahte hain, this is what you are getting here. Aur sath hi sath this site is very very you know prime location hai Caledon ki, because you are off Mayfield and Gore. The Gore ke upar just slightly about 2 to 3 minute drive north on Gore off Mayfield. That's exactly where the site is, you cannot miss it. It's a massive massive site, and already wahan pe iski zoning ho chuki hai, already site has been prepped up, and the launch is going to take place on the 17th. So जो भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप इस साइट में इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, गेट इन टच विद आवर टीम। माय डायरेक्ट लाइन इज 647-993-4844। और साथ ही साथ ब्रैम्पटन में आज लॉन्च करके लेकर आ रहे हैं हम फ्री होल्ड टाउन होम्स, डबल कार गैराज विद डबल कार पार्किंग ऑन द ड्राइवे, फोर कार पार्किंग, सो डबल कार गैराज, टू स्टोरी टाउन होम्स हैं जो आज लॉन्च हुए हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 700, सो दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 700 से यहाँ पे, अगेन यू गाइस कैन गो रॉन्ग विद इट गाइस, एंड यू आर आल्सो गेटिंग सेपरेट एंट्रेंसेस फ्रॉम द कोर्टयार्ड, सेपरेट एंट्रेंस भी है वो भी दी जाती है इनके ऊपर, ग्रेट लेआउट्स यहाँ पे हैं, एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स रेडी टू गो, एंड वी कैन स्टार्ट बुकिंग इन इट टुडे। सो अगर आप ब्रैम्पटन में फ्री होल्ड डबल कार गैराज two story town homes dekhna chahte hain ya lena chahte hain, get in touch with our team right away, we have information available, we can take you to the sales center, we can set up your appointment there, and we can book your unit right on the spot, so you don't have to wait too long. Beautiful. Guys, get in touch with our team. My direct line once again challenge is 647-993-4844, 647-993-4844.
3: थैंक यू सो मच राहुल जी, और इतने एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा दिल कर रहा है कल एक बार फिर आपसे सारी बातचीत की जाए, फिर आपसे मुलाकात होगी इन स्टूडियो एज वेल। तो नंबर बता दूं लिसनर्स को कि आज से ही आप बुकिंग शुरू कर सकते हैं, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पर 6479934844, 6479934844। राहुल जी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टॉक टू यू सर।
4: थैंक यू सो मच
3: यमस्वागत, बाय बाय।
5: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है। नजर डालते हैं आज की टॉप लोकल खबरों की तरफ। सबसे पहले इकोनॉमी अपडेट। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलिम ने कहा है कि कनाडा की इकोनॉमी इस वक्त कमजोर जरूर है लेकिन क्लियरली रिसेशन में नहीं है। हालांकि पिछले दो क्वार्टर्स में जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई है लेकिन एक्सपर्ट्स फिलहाल इसे फुल रिसेशन नहीं मान रहे। उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा यूएस मेक्सिको ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस अग्रीमेंट को रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है और जुलाई 1 तक इस पर फैसला होना है। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन यानी टीटीसी अब सबवे सिस्टम में सेफ्टी बढ़ाने के लिए नया रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल ला रही है। सैम प्रोग्राम के जरिए एंटी सोशल बिहेवियर को तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा। ऑन्टारियो प्रोविंशियल पुलिस के ऑफिसर तरुण बाली जो ब्रैम्पटन से थे ड्यूटी के दौरान कल शहीद हो गए। 29 साल के तरुण बाली और जेम्स बे डिटैचमेंट के ऑफिसर्स ह्यूरिस्ट ऑन्टारियो में एक व्हीकल को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो टोरंटो से करीबन 950 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये इंसिडेंट दोपहर करीबन 12:30 बजे हुआ। उन्हें एक गुड हार्टेड एंड डेडिकेटेड ऑफिसर के रूप में याद किया जा रहा है। एक नई स्टडी के मुताबिक कनाडा में यंग लोगों के बीच निकोटीन पाउचेस का यूज तेजी से बढ़ रहा है जिसे लेकर एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं। अंत में वेदर अपडेट। आज रहेगा मौसम गर्म और ह्यूमिड, सन एंड क्लाउड के मिक्स के साथ हाई ऑफ 27 डिग्रीज और ह्यूमिड एक्स के साथ आपको महसूस हो सकता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और आज का ओवरनाइट लो जा सकता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी शालिनी के साथ सीएमआर एफएम 101.3 पर। गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन सीएमआर एफएम 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: Joining us now is जिनको मैंने नाम दिया है मिरिकल गुरुजी। सो आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे 9 पीढ़ियों के अनुभव के साथ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं क्योंकि ये रहती हैं आयुर्वेदिक दवाइयां जो आपको ठीक करती हैं विद नो साइड इफेक्ट्स। और नंबर बहुत आसान सा है गुरुजी का 4374383399। गुरुजी नमस्कार, कैसे हैं आप?
6: नमस्ते नमस्ते बहन जी, मैं बहुत अच्छा है भगवान को आशीर्वाद से। आप कैसा है बहन जी?
3: बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप इतने बिजी रहते हैं और इतने सारे लोग आपसे मिलने आते रहते हैं हमेशा, तो ग्रेट टू हैव यू विद अस।
6: यस यस यस जी, क्या जी, मेरा पास लोग आता है, आप बताया था वो दुख से कष्ट से आता है, एक वन वीक 10 दिन में उसको हैप्पी हो जाता है।
3: Right.
6: ये सारा ऊपर वाला को आशीर्वाद है। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या है, बीमार आता है हमारा कर्मा से।
3: That's right.
6: Yes, हमारा कर्मा से बीमार आ जाता है। बीमार को लिए क्या होता है, कौन सा बीमार कब कब आता है हमको नहीं मालूम पड़ता है। उसमें क्रोनिकल या उसके क्रोनिकल भी डिसीज होता है, ये क्रोनिकल डिसीज जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो जाता है। एक बार आए तो उसमें आर्थराइटिस एक बहुत क्रोनिकल डिसीज है और एक शुगर भी क्रोनिकल डिसीज है, ये जल्दी ठीक नहीं हो जाता है, वैसा रहता है शरीर को अंदर। ये पहले ये बीमार किसके लिए आ रहा है, बीमार किसके लिए आ रहा है, उसको जड़ को लिए दवा देना है। मेरा दवा मेरा हर्बल तो सारा हिमालय से लेकर आता है, हिमालय एंड कुल मनाली काठमांडू और बद्रीनाथ का बद्रीनाथ केदम वैसा वैसा जगह के जाके मैं सारा मेरा हर्बल सारा उधर से आता है। इसलिए क्या होता है, हमारा दवा में हवा हमारे हर्बल्स में साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, साइड बेनिफिट्स होता है, उससे हमारे शरीर में बीमार सारा ठीक हो जाता है, बिल्कुल साइड इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट अच्छा हो जाता है।
5: ओके, और क्या बात
6: बहुत
5: है?
6: लोगों को बहुत लोगों हमारा हमारा शो सुन के आ गया था, जॉइंट पेन वाला और आर्थराइटिस वाला, नी पेन वाला और लोअर बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए और वो पैरों में सूजन आता है, सुन आ जाता है, नमनेस आ जाता है, उसके लिए बहुत लोग आ गया था। ये लोग सारा भगवान आशीर्वाद से हमारा दवा लेकर ठीक हो गया था। और ये हमारा दवा सारा उन्हें दे रहा है, नाड़ी देखता है, सारा ट्रेडिशनल है हमारा हमारा वो 60-70 साल के पहले इंडिया में डॉक्टर MBBS डॉक्टर बहुत कम था। वो लोग तब बीमार होने के टाइम में लोग किधर जाता है, वो गुजर जाता है, वो वकीम को पास जाता है, वेद को पास जाता है, वैसा वेद मेरा फैमिली है, वैसा वेद में कर रहा है। वो लोग क्या करता है, नाड़ी देखता है, नाड़ी का मतलब पल्स देखता है, पल्स में क्या क्या बीमार होता है वो देख के उसको लिए क्या करना है, क्या वो वाता पित्त कफ दोष, तीन दोष होता है बॉडी में, ये तीन दोष के लिए कौन सा जड़ी बूटी से दिए तो ठीक होता है बता करके देता है, उससे 100% पक्का ठीक हो जाता है, विदाउट साइड इफेक्ट से ठीक होने वोने ठीक नहीं होता है, ये बीमार फिर वापस नहीं आता है जिंदगी में।
5: क्या बात, अच्छा एक बार अगर ठीक हो गई फिर वापस नहीं आएगी, दैट इज वेरी गुड।
6: नहीं नहीं नहीं नहीं आता है, नहीं आता है, एक बार ठीक हो जाए तो फिर वापस आने की बातें नहीं है।
5: अच्छा कभी कभी गुरुजी लोगों को लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से जल्दी ठीक होते हैं और इससे थोड़ा ठीक होने में वक्त लगता है, तो क्या यू नो ये जो दवाइयां हैं इनको खा के इमीडिएट इफेक्ट आ सकता है विद इन फ्यू डेज?
6: हमारा दवा विद इन 1 वीक को अंदर इफेक्ट हो जाता है।
5: अरे वाह क्या बात,
6: 1 वीक को अंदर उसको इफेक्ट बन जाता है, 3-4 दिन में हमको रिजल्ट मिलता है, 20%, 30%, 20%, 30% ऐसा 3-4 दिन में हमको रिजल्ट 100% मिलता है। मिलने के बाद क्या होता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा से काम करता है। ये सारा स्पेशलाइज्ड जड़ी बूटियां हम लेकर आता है हिमालय से, लेकर आके उसको प्रोसेस करके किसको किसको कौन सा प्रॉब्लम के करना है करके मैं देता हूँ।
5: बिल्कुल, अरे वाह, दैट इज वेरी गुड। तो गुरुजी अगर आपसे मिलना हो हमारे लिसनर्स को तो कहाँ मुलाकात हो सकती है आपसे?
6: मेरे को वीकली 3 दिन कार्गो में रहता है, 4 दिन ब्रामपन में रहता है।
5: ओके,
6: मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में कार्गो में रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन में ब्रामपन में रहता है।
5: वेरी गुड, तो नंबर दोस्तों नोट कर लें गुरुजी का, राइट अवे इस नंबर पे मैसेज भेजिए, आपके सभी डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएंगे। कहां कैसे आप मिल सकते हैं गुरुजी से? 437-438-3399 आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
7: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट पूजा हट .com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
1: नोट करें दियोल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स। टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं बिफोर मिड जून 849 में वन वे दो लगेज के साथ। टोरंटो से दिल्ली दो लगेज के साथ वन वे आफ्टर मिड जून 999 में। एंड टोरंटो से दिल्ली जुलाई के महीने में जा सकते हैं $1,049 में वन वे दो लगेज के साथ। टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। लास्ट मिनट डील्स आर आल्सो अवेलेबल। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200.
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
3: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं।
4: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है।
3: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। 416-732-3600, that's 416-732-3600। वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी, आप हैं शालिनी के साथ। और अब सेगमेंट है आज का दिन, यानी व्हाट सो स्पेशल टुडे। और सबसे पहले आज है नेशनल आइस टी डे। गर्मी में चिल्ड आइस टी, बस एक सिप और मूड पूरी तरह से फ्रेश। सो स्टे कूल, स्टे रिफ्रेश्ड। इसके अलावा आज है नेशनल बॉल पॉइंट पेन डे। एक छोटी सी पेन लेकिन आइडियाज और ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का टूल है। राइट योर स्टोरी लिटरली। अवेयरनेस की बात करें तो आज है नेशनल बेड बग प्रिवेंशन डे, यानी क्लीन सराउंडिंग्स, हेल्दी लाइफ। आज है नेशनल ब्लैक काउ डे, आइसक्रीम एंड सोडा का क्लासिक कॉम्बो है, थोड़ा रेट्रो फन है आज के दिन। और फूड लवर्स के लिए आज है नेशनल एग रोल डे, क्रिस्पी स्पाइसी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। फाइनली आज है नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे, खाने का टेस्ट और हेल्थ दोनों बढ़ाने का सीक्रेट हर्ब्स एंड स्पाइसेस, फ्लेवर भी हेल्थ भी। और आज का दिन है रिफ्रेशमेंट, क्रिएटिविटी, क्लेनलीनेस एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो।

अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। टॉप क्वालिटी मटीरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग। चाहे सनरूफ
2: संजीव पुरी,
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपरविजर इज डिक्लाइन।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6472-702-2023-647-702-V-23 license number 10394।
1: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300 9054585300। शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम।

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.fm।
5: हाँ जी मेरे भाइयों, रेडियो वॉइस बज गए हैं 4। हमारा आप सबको बहुत बहुत प्यार। वैसे तो कहते हैं ना कि प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखों तो क्या दो जहां में समाए ना इतना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए ना इतना, पर जब मांगती हो तुम शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे, पर जब मांगती हो तुम शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे, तो समझ में नहीं आता अपनी तकदीर को हम पीटे कितना। ये वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा वीकली कॉन्टेस्ट का और इस बार का प्राइज बेहद धमाकेदार है। अगर आप इस हफ्ते के विनर बनते हैं तो आपको मिलेगा अफ्रीकन लायन सफारी का कपल पास या फिर एडल पासिस, एक नहीं दो, बिल्कुल फ्री। तो दिल धाम कर सुनिए आज का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी में कितनी उम्र तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है? आज का सवाल, अफ्रीकन लायन सफारी में कितनी उम्र तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है? आपको अफ्रीकन लायन सफारी की वेबसाइट से भी ये आंसर मिल जाएगा। ओपन बुक टेस्ट, हाँ जी। और याद रहे, जवाब कैसे भेजेंगे आप? आपका सही जवाब lionsafari.com वेबसाइट पर से मिल जाएगा। फिर हमें ईमेल करें contest@weeklyvoice.com पर। याद रखिए, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेस आएंगे वही वैलिड गिने जाएंगे। contest@weeklyvoice.com। ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना मत भूलिए ALS contest। ईमेल के अंदर अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर के कम से कम आखिरी 4 डिजिट और अपना नाम जरूर लिखे ताकि हम आपको आसानी से पहचान सके। नोट कर लीजिएगा, विनर का नाम इस फ्राइडे के शो में अनाउंस किया जाएगा। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, ढूंढिए जवाब और फटाफट ईमेल भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट। ये हिडो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन और ये है आपका पसंदीदा कॉन्टेस्ट, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट।
2: Another Don Clean with the Don Dux.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
7: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
8: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।

0: 0009.
1: Dr. Neil Gajar, 735 Twain Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
4: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009. संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
3: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स फैमिली डेंटिस्ट केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
5: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
6: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
7: Tasty dosa khane ka man hai? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
8: रेडियो वॉइस में अपनी एड सुननी है तो इंतजार क्यों? कॉल करें 416-660-8545। रेडियो वॉइस।

रेडियो वॉइस के पैकेजेस हैं कमाल, आपके बिजनेस में मचा देंगे धमाल। डायल 416-660-8545 रेडियो वॉइस।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
0: जय श्री राम।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। वेंसडे का खुशनुमा मौसम, घड़ी में बज रहे हैं करीबन 4:25 और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप और हम सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत और हम सभी के फेवरेट श्री पी के सबरवाल जी की। सबरवाल जी पिछले कई दशकों से अपनी नॉलेज, इंटेग्रिटी और मार्केट एक्सपर्टीज के दम पर हजारों फैमिलीज का अपना घर खरीदने का सपना बखूबी पूरा करते आ रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अपना घर अपग्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं या फिर प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो मार्केट को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, हर हफ्ते सबरवाल जी लेकर आते हैं मार्केट की सीधी, सटीक और प्रैक्टिकल एनालिसिस आपके लिए। आज भी पीके, जीटीए और कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की ताजा हलचल, नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज पर रोशनी डालेंगे और सबसे खास बात, आपके सवालों का जवाब भी देंगे लाइव ऑन एयर एंड अनफिल्टर्ड एज ऑलवेज। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कॉल कीजिए स्टूडियो लाइन पर 416-593-0055, दैट्स 593-0055। सबरवाल जी तकरीबन 4:50 तक हमारे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो कॉल करके अपना क्वेश्चंस पूछना ना भूलें। सबरवाल जी, हार्दिक स्वागत है आपका रेडियो वॉइस पर।
4: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स। जी अमिताभ जी,
3: सबरवाल जी, हम हमेशा अपने शो की शुरुआत हम आपसे रियल एस्टेट की अपडेट से करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट्स अनाउंसमेंट की है बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने, तो इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं है, 2.25% पे होल्ड किए हैं। तो सबसे पहले आपकी राय इसके बारे में, उसके बाद आपसे रियल एस्टेट की अपडेट्स लेंगे।
4: जी अमिताभ जी, ये वाइडली एक्सपेक्टेड था कि ये इंटरेस्ट रेट को छेड़ेंगे नहीं। आपको शायद याद होगा, कोई हमारा अगर पिछले वीक का प्रोग्राम अगर सुने उसमें बड़ा क्लियर था, जैसे हमारी जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि ये जब हल्ला चल रहा था, रिसेशन की बात चल रही थी, तो उसने कहा था बिल्कुल मत मानिए इसको। दो बार ठीक है टेक्निकल हम कह सकते हैं, इसके आगे आपने टेक्निकल वर्ड लगा दिया, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगी क्योंकि इसमें टेम्परेरी इवेंट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं जो कि अनवारंटेड थे, जैसे कि ऑयल के बारे में बात हुई थी और ये 89% ऑफ द इकोनॉमिस्ट मान रहे थे, 90% ही हो गया कि इंटरेस्ट रेट को छेड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ 3% ये मान रहे थे कि रेट हाइक हो सकता है और 8% कह रहे थे कि रेट कट होगा, यानी कि 89% मान रहे थे ऑलरेडी कि रेट को होल्ड किया जाएगा 2.25% में, जो कि हुआ। और ये मैं एक बात और 2.25% में जो कि हुआ और ये मैं एक बात और बता दूं मैकलम साहब की, जब मैं आज सुन रहा था जब आज वो मीटिंग में थे तो जब वो बता रहे थे इसके बारे में तो बड़ा उनकी टोन बड़ी केयरफुल टोन में वो बोल रहे थे। उनकी बात से मैंने ये समझा कि उनका ये मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लगता है कि इस साल अब इंटरेस्ट रेट पे छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार अभी और इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होनी है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, अगस्त में नहीं होनी और नवंबर, ये 2 मिस होंगे महीने, क्योंकि लगभग 40 दिन के बाद होता है तो ये 2 महीने मिस हो जाते हैं, तो इसका छेड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन साथ में ये भी कहा गया था आज की एडवाइजरी में कि मच विल डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ कंफ्लिक्ट इन ईरान, उसपे बहुत डिपेंड करता है क्योंकि वहां हमारे भाई साहब जो बैठे हैं उस तरफ साउथ, वो शाम को कुछ कह देते हैं सुबह कुछ, जैसे अभी वो देखो वहां पर ईरान में कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने कह दिया वार्निंग वार्निंग वार्निंग, फिर वही वार्निंग हो कुछ नहीं पर वार्निंग में वार्निंग चल रही है
3: जी।
4: ये चीजें जो है ना ये परेशान करके बैठी हुई है पूरी दुनिया को। तो इंटरेस्ट रेट यस ये रुक गया, जो हमारे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाले हैं उनके लिए खुशखबरी की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा और मान के चलिए कि इस साल ये यही का यही रहना है जी।
3: ओके सबरवाल जी, इससे जुड़ा है, इंटरेस्ट रेट से जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी है कि पिछले हफ्ते थोड़े जॉब मार्केट के नंबर्स आए थे, तो आपकी नजरों में अब इंटरेस्ट रेट्स होल्ड किए हैं तो जॉब मार्केट नंबर्स पे इसका कैसा असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं इसको?
4: देखो फ्राइडे को आई थी रिपोर्ट जॉब मार्केट की
3: जी,
4: ठीक है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कहां पर हम रिसेशन की बातें कर रहे थे और कहां पर जो है बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर ने कह दिया कि रिसेशन नहीं है और उसने प्रूव कर दिया, उसकी बात सच्ची साबित हो गई कि जॉब मार्केट 88,000 जॉब्स ऐड हुए, 88,000 ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले चार महीनों में 1,12,000 जॉब गई थी, 80% कवर कर दिया एक ही महीने ने जॉब के अंदर। अब हम इसको कैसे रिसेशन कह सकते हैं मुझे बता दीजिए आप,
3: इसीलिए तो टेक्निकल रिसेशन हो लोग कह रहे थे मेरे ख्याल से सबरवाल जी,
4: खत्म हो गई बात ही, खत्म हो गई जो इन गवर्नर साहिबा ने कहा थी बात, वो बात प्रूव हो गई कि ये जो चीजें हैं ये, अच्छा ये बात भी नहीं है कि ये जो जॉब आई है ये पार्ट टाइम में आई है, नहीं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट 66,000 कम हुई है।
3: ओके
4: यानी कि कई पार्ट टाइमर्स ऐसे होंगे जिनको कि फुल टाइम दे दिया गया
3: जी,
4: और ये भी नहीं कि सरकार ने ही ले लिए बहुत सारे जॉब उनके यहाँ पर निकले, नहीं ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक और खुशखबरी वाली बात है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जिसके अंदर हमें डर लगा हुआ था कंस्ट्रक्शन में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 26,800 जॉब आई है इसके अंदर, यानी कि ये चीज बता रही है कि जो हलचल पैदा हुई है रियल एस्टेट के अंदर अप्रैल 1 के बाद, वो ये फिगर बता रही है कि ठीक हलचल हुई है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट ले रहा है इस वक्त वो देखेगा कि आजकल फिर हलचल स्टार्ट हो चुकी है लो राइज के अंदर और हाई राइज के अंदर, इसकी बात भी आगे चल के करेंगे। और कल्चर एंड रिक्रिएशन के अंदर 19,300 जॉब आई है, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग के अंदर 18,700 जॉब आई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये बताता है कि वी आर नॉट इन रिसेशन, हम लोग बिल्कुल सॉलिड फुटिंग में चल रहे हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए आज रिपोर्ट आई है अमेरिका की, आप देख लीजिए वहां पर जो भाई साहब यहाँ टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ना मजाक पीछे आता तारीफ पे तारीफ, तारीफ नहीं कर रहे वो टैरिफ पे।

0: नहीं पड़ रहे हैं, तो वो टैरिफ जो है उल्टा उनको भारी पड़ गया। वहां पर 4.2 की इन्फ्लेशन आ गई है यूएस के अंदर, 4.2 की इन्फ्लेशन, यानी कि जो वो टैरिफ लगा रहे हैं या तारीफ लगा रहे हैं जो मर्जी कह लो, वो उन्हीं को महंगा पड़ रहा है वहां पर। यहाँ की जो हमारी इंडस्ट्री जो बेच रही है वो तो अपने प्राइस में बेच रही है, वो अगर 25% उसका टैरिफ लगा रही है तो उनको 25% महंगा पड़ रहा है, तो वहां पर नेचुरली इन्फ्लेशन आ गया। तो हमारा जो 2.8% इन्फ्लेशन था वो उसमें से अगर आप ऑयल को निकाल दो, ऑयल की वजह से ग्रोसरी को निकाल दो, तो कोर तो हमारा टारगेट से भी नीचे था, 1.8%। वी आर इन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और ये कई इकोनॉमिस्ट ने कहा, मैं तो पढ़ता हूँ, एंड्रू हेंसिक, उन्होंने टीडी बैंक वाले, उन्होंने कहा ये इकोनॉमी एक्टिविटी अभी तो सेकंड क्वार्टर में और ज्यादा बाउंस करेगी, बाउंस बैक करेगी, रिबाउंड करेगी ये, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। बेंजामिन रिजवी साहब जो हैं, उन्होंने बीमो के, उन्होंने कहा दिस इज स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग रिपोर्ट, बड़ा अच्छा। देखो, और डेविड अलेक्जेंडर साहब जो सीपीए के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी यही बात की सेम, कि सेकंड क्वार्टर के अंदर 2 quarters की कंट्रेक्शन के बाद ये रिबाउंड करेगा। दिस इज समथिंग वेरी गुड न्यूज, मैं तो कहूंगा जी।
1: डेफिनेटली बहुत ही एनकरेजिंग अपडेट्स ही है सबरवाल जी। हालांकि आज मैं न्यूज थोड़ा फॉलो कर रहा था और ट्रंप साहब का एक एड्रेस देख रहा था, तो उन्होंने तो कहा है कि आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू रिन्यू और गो एट विद कुस्मा, आई डोंट थिंक दैट्स बेनिफिशियल।
0: सर, मैं आपको आज बता देता हूँ, ही विल डिसाइड, बस इस बात को पूरी को सुनिए आप जी, इसका मतलब क्या निकलता है, विल डिसाइड। इसी चक्कर में अगले भाई साहब ने 1.5 साल निकाल देने हैं जो बचे हुए इनके, सुने, या ये टाइम गेन करेगा। ये होती है भबकी, हम लोग पंजाबी में कहते हैं भबकी, बब्बड़ भबकी कहते हैं इसको, ये भबकी है और ये नेगोशिएशन का टूल होता है कि आप नेगोशिएशन की टेबल में बैठने से पहले मैं सोचूंगा मैं रिन्यू करता है कि नहीं करता, आपको बैकफुट में कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बैकफुट में करने की। वहां मेक्सिको बड़ा स्ट्रांग फुटिंग में चल रहा है, यहाँ पर कार्नी साहब का तो मैं कायल हूँ, मैं उनको बहुत पहले मिला था जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब गवर्नर थे
1: जी।
0: इनकी खूबी है इन भाई साहब की, ही इज ए स्ट्रांग इकोनॉमिस्ट, इनकी खूबी है कि ये बोलते कम है सुनते ज्यादा है,
1: बिहाइंड द सीन्स काम करते रहते हैं चुपचाप,
0: बिहाइंड द सीन काम करते हैं भोले बनकर, और है भी भोले, सिंपल से इंसान है और ये काम कर जाते हैं। इसी बात की तो आग लगी हुई है साउथ ऑफ द बॉर्डर के ऊपर, ये आगे से बोलता क्यों नहीं है। देखो, मैंने एक गंदी सी लैंग्वेज है, जो मर्जी मैं सुअर से अगर आप लड़ाई करोगे तो नुकसान हमारा है, वो तो कीचड़ को इंजॉय करेगा, गंदे आप हो जाओगे।
1: सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा क्यों ना उनके पास चले हम
0: जी।
1: हेलो, आप रेडियो वॉइस पर लाइव है, पीके जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड
2: जी। पीके जी, गुड आफ्टरनून जी।
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम बताइए
2: जी। सरदार बोल रहा हूँ मैं, लास्ट वीक भी कॉल की थी। पीके जी, चार बेडरूम का घर हो किसी के पास, उसमें से 2 रूम वो रेंट आउट करता है, तो मुझे किसी ने बताया कि उसमें LTV के रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते हैं, और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आप सिंपली पुलिस को कॉल करके एविक्शन कर सकते हैं, क्या ये ठीक किसी ने बताया मुझे?
0: बिल्कुल 100% गलत है।
2: ओके
0: जी, आपका प्रिंसिपल घर है
2: जी? जी
0: 100% गलत है जिसने भी बोला है आपको, मैंने 99 नहीं कहा, 100% मतलब डिफॉल्ट करता तो पुलिस को लाके बाहर निकाल दोगे आप उसको। डिफॉल्ट के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ बात होती है। 101% लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड इस पे लागू होगा। आपने बेसमेंट किराए पे दे रखी है, 2 बेडरूम किराए पे दी है, जिन भाई साहब ने आपको बताया है उन भाई साहब की जरा
2: बेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल हाउस है उसमें 2 रूम दिए हैं।
0: हाँ, एक भाई बेसमेंट ने दिया, जो ऊपर दिया प्रिंसिपल घर के अंदर आपने 2 रूम दिए हैं, रेंटल एग्रीमेंट आपका बना हुआ है, लैंड और टेनेंट बोर्ड 100% लागू होगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं सरदार जी आपको कि प्लीज सलाह प्रोफेशनल से लिया करिए, पड़ोसियों से मत लिया करिए। पता चला पड़ोसी आपका नाई है और बाईपास सर्जरी की आप बात कर रहे हो, या डॉक्टर से आप पूछ रहे हो कि मैं बाल किस डिजाइन के बनवाऊं, वो नाई से पूछो आप। देखो, ये
2: कॉल किया है ना सर
0: जी, मैं साथ साथ ये भी डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 100% एलटीबी रूल लागू होगा, नहीं तो कोई भी आदमी कभी भी निकाल के बाहर फेंक देगा उनको, वो बेचारे कहाँ जाएंगे।
2: जी जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू।
0: यस, पुलिस को आप तब बुला सकते हो जब न्यूसेंस क्रिएट हो रही है पड़ोसियों के लिए, घर में झगड़े हो रहे हैं और बाकी के कमरों में जो लोग रह रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, और उस केस के अंदर आप पुलिस को बुला सकते हो। और उससे उसको पुलिस को बुलाने से पहले भी आपको उनको एक नोटिस देना होता है, नोटिस देना होता है क्योंकि उसको उसको N5 कहते हैं, N5 का नोटिस देना होता है जिसमें कि ओवर क्राउडिंग डैमेज और हल्ला गुल्ला पड़ोसियों को परेशान किया जाता है, इसके अंदर भी 2-3 अलग अलग किस्म के जो है वो टर्म्स लगते हैं। लेकिन जब ज्यादा हद से ज्यादा बात बढ़ जाती है तो आप ये इसको तो छोड़ो, नोटिस को सीधा कॉप्स को बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, घर में रहने वाले परेशान हो रहे हैं, खतरा है शरीर को, इस बेसिस पे बुला सकते हो, ना कि आप निकाल के उनको बाहर फेंक सकते हो। जी जी
1: ऑलराइट, थैंक यू सरदार साहब आपका कॉल के लिए। और यहाँ हमारे बाकी सुनने वालों से हमको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी कुछ वक्त के लिए 10-15 मिनट और है, तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो प्लीज फोन उठा के स्टूडियो को कॉल करें। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। जी सबरवाल साहब
0: जी, हम बात कर रहे थे शायद एम्प्लॉयमेंट की, जॉब मार्केट की बात कर रहे थे, राइट? तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि वी आर एट ए वेरी स्ट्रांग फुटिंग। नंबर टू, हाउस मार्केट जो है, हाउसिंग मार्केट, वो भी लगातार अभी नेगेटिव पी से खत्म हो गई, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गई। एक गुड न्यूज ये है कि टोरंटो GTA की कॉन्डो मार्केट ने रिबाउंड किया है मई के महीने में, और ये रिबाउंड जो है छोटा मोटा नहीं है, 4.2% का जंप है, ये कम जंप नहीं है। और लेकिन प्राइस अभी नहीं बढ़ रहे, प्राइस अभी भी कम है, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करो तो 6.4% प्राइस कम है, ये अभी भी शॉकिंगली कहूंगा कम है। लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जिंदगी की कि हर चीज इकट्ठी नहीं होती, एक एक हरकत से अगला स्टेप पता चल जाता है। जैसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट हुई है जी, तो नेचुरल उसके बाद पहले फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे इन्वेंटरी कम होगी, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा। ये माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल कम टू अ ट्रू पिक्चर, और 2027 में माना जा रहा है कि 2.4-2.3 के आसपास प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। और ये 2.2-2.3 पर कोई इसको कम ना समझे, ये एक पॉजिटिव साइन है बड़ा जबरदस्त, कहां ये घट रहा था और कहां ये बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यहां आ रही है अमिताभ जी कि सेलर चाहता हुआ भी नहीं बेच पा रहा है, और बायर अभी भी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं ले लूं। अब सेलर की बात करें तो वो चाहता हुआ इसलिए नहीं बेच पा रहा कि उसको लॉस नजर आ रहा है। यस, मैं उनके साथ हूं, अगर आपको लॉस बड़ा नजर आ रहा है तो मत बेचिए, इसको रोक के रखिए। अगर आप रोकने में परेशान हो रहे हैं और आपका कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है जबरदस्त, तो यू हैव नो चॉइस। तीसरी बात, कई बेचना चाहते भी हैं तो नहीं इसलिए बेच पा रहे कि उनके घर की इक्विटी जीरो हो चुकी है, जितने का घर बिक रहा है उससे ज्यादा कर्जा है उनके ऊपर। इससे दो
1: आपकी इजाजत से मैं एक सीधा कॉलर के पास जाना चाहूंगा।
0: जी जी जी,
1: हेलो, रेडियो वॉइस पर आप लाइव हैं, पीके जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
3: हेलो
0: जी जनाब, बताइए।
3: जी पीके जी, कैसे आप?
0: ठीक है, आप नाम बताएंगे?
3: मेरा नाम रामीन है जी, मैं काफी सालों से आपकी ये गुफ्तगु फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत फायदा हो रहा है।
0: थैंक यू वेरी मच, आपकी आपका दिया हुआ खाते हैं हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, थैंक यू।
3: देने वाला सब ऊपर बैठे हुए, देने वाला कोई एक दूसरे
0: को जरिया बनाया हुआ है। रमीन जी, आपको उन्होंने जरिया बनाया हुआ है ये।
3: जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन आपके कहने से, आपकी ये गुफ्तगु से काफी लोगों को फायदा हो रहा है, काफी लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो मैं बात को ज्यादा बढ़ाने नहीं चाहता, छोटी सी बात आपसे पूछना था। मेरा एक घर है ओशावा में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका जो मॉर्गेज है अभी मैं पे कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो टेनेंट है वो इसी लास्ट मंथ में वो घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन मेरा मॉर्गेज है $3,500 मंथली। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि क्या मेरे लिए सही रहेगा कि मैं बैंक से बात करके सिर्फ सिर्फ मैं इंटरेस्ट भर दूं सिर्फ कुछ 6 महीने और साल के लिए सिर्फ इंटरेस्ट भर दूं?
0: बिल्कुल, ये बताइए रमीन जी, बिल्कुल ठीक है, ये बताइए आपका घर अंदाजा कितने का होगा?
3: वैल्यू, मार्केट वैल्यू 7-6.5 के आसपास या इतनी होगा। और मेरा उसमें है मॉर्गेज है अभी 450।
0: ये बताइए आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आप क्या करते हैं फॉर लिविंग?
3: मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं है, फैमिली नहीं, अकेला हूँ, मैं काम करता हूँ कंपनी में।
0: T4 कितना है?
3: T4 मेरा आ जाता 770 के आसपास।
0: 70,000 के आसपास?
3: जी जी
0: हाँ, 70,000 के आसपास। तो आपके T4 के हिसाब से आपकी मॉर्गेज ज्यादा क्यों है? कोई कागज बने थे या किसी ने क्या? बैंक बता दीजिए कौन सा, मेरे को आइडिया लग जाएगा। बैंक कौन सा आपका?
3: बैंक CIBC।
0: CIBC, तो आपके CIBC में अंदर जाके बात की थी या किसी मॉर्गेज के थ्रू, एजेंट के थ्रू?
3: नहीं, मेरा किसी के थ्रू हुआ था।
0: हाँ, वही नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम के हिसाब से आपकी मॉर्गेज सब ज्यादा 3,50,000 होनी चाहिए थी और आपकी मॉर्गेज जो है 4,50,000 है। देखिए, अगर वो आपका इनकम नहीं खोलते तो आप CIBC आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं थोड़ा टाइट हूँ, मेरे को 6 महीने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कर दीजिए। 90% वो मान जाएंगे
3: जी,
0: 90% वो मान जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अपने कागज लाके इनकम दिखा दीजिए तो मत जाइएगा।
3: अच्छा।
0: क्योंकि RBC ने कईयों को लेटर भेज दिए हैं कि आपकी मॉर्गेज हम खत्म कर रहे हैं, जिनके कागज गलत बने हुए थे। कईयों को RBC के लेटर आने शुरू हो गए हैं कि हम आपकी रिन्यू नहीं कर रहे। तो आप एक फंस जाएंगे किसी चक्कर में, तो सिर्फ पहले बात करिए कि मेरी को आप 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, मेरा इंटरेस्ट मान जाएंगे। 10% चांस है कि शायद आपसे वो पेपर्स मांगे, तो फिर मत करिएगा, ठीक है सर?
3: अच्छा।
0: तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, आपकी उम्र कितनी है?
3: 40 के आसपास, ये 41।
0: बहुत छोटे हैं आप तो, वेरी नाइस। तो बच्चे कितने हैं आपके?
3: मेरा सिंगल हूँ पर्सन, यहाँ पे मेरा कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ, सिंगल हूँ।
0: अच्छा, आप अकेले हैं यहाँ पर। तो रमीन जी, जान है तो जहान है
3: जी।
0: अगर आपका टैलेंट जा रहा है तो क्या नया टैलेंट नहीं आएगा क्या?
3: नहीं, टैलेंट तो आ रहा है, लेकिन मेरा 3500 का जो मॉर्गेज है, मैं अभी रिनोवेशन करना चाहता हूँ, घर का हालत बहुत खराब है। आपको पता है टेनेंट जब निकलता है तो घर की क्या हालत कर छोड़ता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि 6 महीने और 8 महीने तक सिर्फ मैं इंटरेस्ट भर दूँ, ताकि मैं इस दूरी पे मैं इसको अपना रिनोवेशन करके
0: अपना बैंक जाके बात करिए। मुझे पूरी मेरा 90% वो आपको ओनली इंटरेस्ट में बिठा देंगे 6 महीने के लिए, ठीक है, बात कर लीजिए। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि एक तरफ से आप इतने तंग हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि मैं 6 महीने के लिए टैलेंट नहीं लाऊंगा। सर, ये क्या कहते हैं ना, पाउडर लिपस्टिक, या कहते हैं कॉस्मेटिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस। मैं आपको 5-7 हज़ार चाहिए और 1 महीने के बाद टैलेंट ले आइए। मैंने बार बार कहा कि आपकी सेहत है तो फिर कमा लोगे, टेंशन में आके क्या जीना?
3: नहीं, आपके पास ये, लेकिन आपको आजकल पता है कि टैलेंट जब मैं किसी को दूंगा तो वो इतनी घर की हालत खराब कर चुका है, ये बहुत हालत, घर कोई भी उसको अभी 2,000 देने के लिए भी तैयार नहीं है। घर की हालत, दरवाजा तोड़ चार सब के,
0: वो आप देख लीजिएगा और जैसे भी आपको अच्छा लगता है। आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है?
3: जी, लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने 25 साल हुआ है कनाडा में, मेरा लाइन ऑफ क्रेडिट, मेरा क्रेडिट स्कोर 9 है।
0: मैंने क्रेडिट स्कोर नहीं पूछा, आपको कोई लाइन ऑफ क्रेडिट अपने घर के ऊपर लिया हुआ है बैंक से?
3: जी हाँ।
0: कितना?
3: 23,000।
0: यूज कर लिया कि पड़ा हुआ है?
3: एक बार यूज किया था, फिर वापस उसको भरा था।
0: बस ये लाइन ऑफ क्रेडिट से आपका आराम से आपकी घर की रिपेयर हो जाएगी, और अगर आप हिम्मत करें तो ये सारी रिपेयर 1 महीने ज्यादा नहीं लगता करा दीजिए, और उसका रेंट पे चढ़ा दीजिए। ये 23,000 में आपको पूरे लग, जितना मर्जी मुझे घर मत बताओ, आपकी बात से टेनेंट के जाने के बाद घर का जो हाल होता है मुझे पता है। पर ये सारा कुछ जो है ना, आपका कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर 10-15 हज़ार से ऊपर खर्चा नहीं आएगा। और ये करके महीने का 6-6 महीने वाली बातें मत करो, आप तंग है ये मेरी सलाह है, बाकी सीएबीसी जाके बात कर लीजिए जी अपना अमिताभ जी।
3: एक सवाल और है, लेकिन इसमें मेरा कोई क्रेडिट कोई कुछ तो इशू नहीं होगा वहाँ पे?
0: बिल्कुल मैं... भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप रेगुलर अगर पेमेंट कर रहे हैं सीआईबीसी को, आपका देखिए क्रेडिट इसीलिए बहुत अच्छा है कि आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं।
3: ओके
0: थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं यहाँ बता दूँ कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ, तो आपको कुछ और पूछना हो तो मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर लीजिए। थैंक यू
3: जी, थैंक यू सो मच।
1: हमारे सुनने वाले कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, और आपको ये बताना चाहेंगे कि पीकेजी का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सो दिस वुड बी योर फाइनल अपॉर्चुनिटी टुडे। आप स्टूडियो को कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। सबरवाल साहब, एक क्वेश्चन मेरा था कि TRREB कहता है कि लिस्टिंग्स ऑलमोस्ट 19% नीचे आ गई है, लेकिन सेल्स ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट में मकान कम है और खरीदार ज्यादा, क्या फिर से बिडिंग वॉर्स वापस आ रही है, आपको क्या लगता है?
0: बिडिंग वॉर अभी भी हमने की है, बिडिंग वॉर तो कभी भी कर सकते हैं ना आप। देखो कितना अच्छा साइन है कि लिस्टिंग 90% डाउन हो गई और सेल बढ़ गई 4.2%, यानी कि क्लियर ये बात, क्लियर इंडिकेशन है कि ये सेलर्स बायर्स की मार्केट के हाथ से निकलते निकलते सेलर्स की मार्केट में भी नहीं गया, लेकिन ये बैलेंस्ड मार्केट की तरफ जा रहा है। क्योंकि बायर्स से सेलर में इतनी झटके से नहीं जाएगा कि रात को सोए तो सुबह उठ के बायर्स की मार्केट से उठ के सेलर की मार्केट चली गई, टाइम लगता है, पहले बैलेंस्ड मार्केट होगी, अब ये बैलेंस की तरफ जा रही है, ये तो इसका सीधा सा जवाब है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि
1: सबरवाल साहब माफी चाहूंगा, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं, क्यों ना हम सीधा उनके पास चले।
0: जी जी जी जी जी,
1: हेलो, आप पीके जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
4: जी पीके जी, मैं खान बात कर रहा हूँ, पूछना ये था कि लास्ट वीक आपने बताया कि कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास आए हैं जिनके 4 साल बाद क्लोजिंग है, तो ये काम मिसागा वगैरह में है या टोरंटो में है?
0: डाउनटाउन, कोर डाउनटाउन, जबरदस्त जगह, अनबिलीवेबल जगह।
4: और कितने तक का अपार्टमेंट है वहाँ पर?
0: देखो ये आप मेरे को मिल लीजिए कि आपको सस्ते सस्ता भी मिल जाएगा 5-5.5 लाख का, और महंगी से महंगा भी है, हाई क्लास बिल्डिंग के अंदर है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए खान साहब और हम मिल लेंगे, क्योंकि मैंने नॉन डिस्क्लोजर साइन किया हुआ है, मैं ओपनली ऐसे बता नहीं सकता। मेरा नंबर है तो मैसेज डाल दीजिए, एक मुलाकात कर लेंगे और ये आप बात कर लेंगे।
4: चलो ठीक है, नंबर है मेरे पास आपका।
0: थैंक यू, थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी,
1: मैं तो चाह रहा था कि आज का शो खत्म होने से पहले थोड़ा डेवलपमेंट चार्जेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए, क्योंकि आजकल
0: नहीं, मैं बिडिंग वार की बात पहले इमीडिएटली कर लेता हूँ, डेवलपमेंट चार्ज की बात अगर टाइम हो तो कर लेंगे। बिडिंग वार तो अभी भी चल रही है मेरे ऑफिस में, अभी भी हमने 2-3 घर बिडिंग वार में बेचे भी हैं, खरीदे भी हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर मार्केट से अगर लो प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस से अगर कम प्राइस होगा तो बिडिंग वार कभी भी हो जाएगी।
1: राइट,
0: अगर 1 मिलियन का घर है, आप उसको 9 लाख में अगर लिस्ट कर देते हैं तो नेचुरली इसके ऊपर बिडिंग हो जाएगी। बिडिंग में हमने अभी भी खरीदे, अभी भी बेचे हैं, तो इसलिए वो बात नहीं है, पर इससे गुड साइन कि लिस्टिंग कम होती जा रही है और सेल बढ़ती जा रही है। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस की जो बात आप कर रहे हैं, इमीडिएटली मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। ये आपको याद होगा 30 मार्च को ये अनाउंसमेंट हुई थी, और इसका इसको कहते हैं DCRP, डेवलपमेंट चार्ज रिडक्शन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम जो है ये फेड गवर्नमेंट ने कहा था कि आप म्यूनिसिपैलिटीज अक्रॉस ओंटारियो, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा था म्यूनिसिपैलिटीज अक्रॉस ओंटारियो कैन अप्लाई फॉर फंडिंग टू दिस प्रोग्राम। तो फंडिंग के लिए उनकी कंडीशन रखी गई थी कि आप बताओ कितना डेवलपमेंट चार्ज कम करते हो, 30-50% कम करते हो तो आपको फंडिंग दी जाएगी, और इट इज ए वेरी गुड साइन। और ये जो है फेडरल एंड प्रोविंशियल फंडिंग जो है 10 साल तक आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दे रही है लगातार। और इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी अभी तक से कितनी कंट्रीब्यूशन करती है इस पर डिपेंड करेगा, और इसकी लास्ट डेट जो है 19 जून है, सिर्फ 9 दिन रह गए इस बात को। और इसके ऊपर सीएमएससी ने कहा है कि अगर ये म्यूनिसिपैलिटीज इसके ऊपर सारी आ जाती हैं और पूरा शेक हैंड करती हैं और इन्वॉल्व होती हैं, तो वी कुड अनलॉक 16,000 टोरंटो होम्स ए ईयर, एक साल के अंदर 16,000 एक्स्ट्रा अफोर्डेबल घर बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, देखो 14% का जंप, टोरंटो में 10% का जंप है, अदरवाइज बाकी जगह में ज्यादा भी है, कई जगह ओटावा में जैसे बहुत कम है, क्योंकि वहां पर पहले ही इसके डॉलर चार्जेस बहुत कम है, तो इट इज अ गुड रिपोर्ट, आपने अच्छा पूछा, तो इसके लिए अगर कहोगे तो डिटेल में अगले हफ्ते बात कर लेंगे।
1: श्योर। सबरवाल जी, आप अपने इंस्टाग्राम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हैं?
0: मैं बताऊंगा, मेरे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं इंस्टाग्राम में, लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे ऑफिस में हर मंडे चाय पे चर्चा होती है, एजेंट्स आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, इनफॉर्मल हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक छोटे छोटे क्लिप्स मेरे इंस्टाग्राम में आते रहते हैं, PK सबरवाल ऑफिशियल, ये इसमें फॉलो करिए, बहुत कुछ मिलेगा। जो इंटरव्यूज मेरी रिसेंटली हुई है कुछ बिल्डर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, उसके भी छोटे छोटे क्लिप्स मिलेंगे, एक रियल पिक्चर आपके सामने आएगी। अपने तजर्बे हम लोग शेयर कर लेते हैं, जस्ट गो टू इट, फॉलो इट, यू लव इट, PK सबरवाल ऑफिशियल। और किसी किस्म की रिएक्शन की आपको नीड हो, नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ, वील हैव मीटिंग, मुलाकात करेंगे एंड वी डिस्कस फ्रॉम देयर ऑन। उसके बाद आप अगर कॉल करेंगे तो मुलाकात होगी, हम आपको दोबारा अपने आप कॉल नहीं करते क्योंकि वी डोंट वांट टू बॉदर यू। थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दोज इनसाइटफुल मार्केट एनालिसिस एंड अदर यूजफुल टिप्स फॉर आवर लिसनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। जी थी आज की चर्चा पीके सबरवाल जी के साथ। पीके जी से मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
5: रेडियो वॉइस में अपनी एड सुननी है तो इंतजार क्यों, कॉल करें 416-660-8545। रेडियो वॉइस।
6: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन रॉजर्स की बेहतरीन डील से आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा। वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर ही डील्स। जरूर डायल कीजिएगा 647-864-8000, 647-864-8000, सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा। ओवर टू वकार खान जी।
7: लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स है, इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, टीवी के, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का, सुपर फास्ट फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 930 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट, लेटेस्ट मॉडम, अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट पे दिला देंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड US कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है। और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज़ कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, ज़रूर एक बार कॉल करें। नंबर है मेरा 647-864-8000, 647-864-8000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 647-864-8000,
6: 647-864-8000। वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर भाइयों जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से, 647-864-8000, 864-8000, यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

एंड वी मीट अगेन ऑन द डे जहाँ फिर से वो बड़े बुजुर्गों की बात है ना, वो याद आ गई मुझे कि इतिहास सिर्फ स्कूली किताबों में ही नहीं पढ़ा जाता, इतिहास रोज हमारी आंखों के सामने लिखा है जाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने अपने तरीके से हिस्ट्री राइट एंड रीराइट कर ही रहा होता है। पर क्या है कि ना, नजर हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियों या हस्तियों तक ही सीमित रह जाती है। नहीं, जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली हिस्ट्री बनाई, जहां ही कंप्लीटेड पूरे 4,399 दिन एस कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम देयर, यानी नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया एज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अभी से फैंस कह रहे हैं उनके कि मोदी जी को इलेक्टोरल रेस में कैचअप करना फॉर नाउ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इलेक्शंस जीत पाना और 12 साल से ज्यादा ऑफिस में टिक पाना, अब है नहीं कोई ये आसान सा हलवा, है ना। अब देखो ना, हम यहाँ कनाडा में ही 2 साल की रेंट लीज बिना टेंशन की पूरी नहीं कर पाते, रिकॉर्ड पूरा बन गया वहां पर। इस पर जहां बहुत से देशों के भी लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, इवन यू नो बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों बधाई दे रही है मोदी जी को, वही मोदी जी के सपोर्टर्स जहां ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगा रहे हैं, उनकी उपलब्धियां विद प्राइड गिनवा रहे हैं, लाइक चंद्रयान, UPI, इकोनॉमिक पावर एंड यू नो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। वही मीम्स मेकर्स जो हैं, क्रिटिक्स हैं और जो ऑपोजिशन में बैठे लोग हैं, मार्केटिंग गिमिक बता रहे हैं, कह रहे हैं ये जो इलेक्टेड वर्ड जोड़ा है ना, ये भ्रमित कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री 1947 अगस्त 15 से गिने जाने चाहिए, ना कि 1950 26 जनवरी से। कोई कह रहा है ये रिकॉर्ड विकॉर्ड टूटना तो ठीक है भाई, पेट्रोल के दाम और बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी तो तोड़ो। कोई मीडिया के कंट्रोल की बात कर रहा है, तो कोई हर उपलब्धि में कुछ तो कमी बताया जा रहा है। सो ऑन दिस सोशल मीडिया इज ऑलवेज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू फैंस एंड क्रिटिक्स। वेरी नो, दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर सिंह कि एक बार तो हम सभी मानेंगे कि भारत का नाम जब भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आता है, हम सभी भारतीयों का, चाहे वो कहीं भी दुनिया में बैठे हो, सीना गर्व से बहुत चौड़ा जाता है। 56 इंच, वो कहते हैं ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बाकी सवाल तो उठेंगे हर दौर में, यही तो है डेमोक्रेसी की शान। पर दुनिया आज नए रूप में देख रही है क्या, मेरा प्यारा भारत, मेरा प्यारा हिंदुस्तान।

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 PM. ये मैं हूँ स्वाति, साथ है हैरी और आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़। इट्स टफरी टाइम जिस पर ये टाइम है फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज एक सुनवाने का। तो जो गाना मैंने ताजा तरीन आपके लिए चुना है, जिसे मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, ये एक वाइब्रेंट सा मॉडर्न पॉप है, अपबीट है, रोमांटिक ट्रैक है, डांसेबल रिदम है इसमें, येट एनर्जेटिक भी है। आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि अच्छा खासा बैलेंस है, वो जो एक रूमानी गाने होते हैं वैसी वाइब ली और उसमें साथ में आप मटक भी सकते हैं ना, ग्रूव वाला म्यूजिक होता है। लिरिक्स हाईलाइट करते हैं वो खुशी जो सबको मिलती है जब कंफ्यूजन के बादल हमारे दिमाग से छट जाते हैं और प्यार की सर्टेनिटी वाली जो रोशनी होती है वो रूबरू हो रही होती है, बोले तो सिचुएशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड वाले स्टेटस से ऊपर उठकर जब इट्स कमिटेड वाला स्टेटस आ जाता है, चुन लिया मैंने फाइनल डिसीजन फाइनली, वो स्थिति। ऐश किंग के वोकल्स हैं, सूट कर रहे हैं ट्रैक को, हुक बहुत कैची है इसका, आई गेस इट्स गोइंग टू गेट अटेंशन बाय रील मेकर्स, प्लस आपकी प्लेलिस्ट में भी अटेंशन इसे मिल सकती है। लिरिक्स आर बाय आईपी सिंह एंड करण विद क्यू, ये वही है जिन्होंने वो गाना लिखा था और बनाया था और होर दस किनिया तरीफा चाहिए दिया तेनू, है ना, पॉपुलर सा वीरे दी वेडिंग का। एंड म्यूजिक इज ऑल्सो बाय करण, तो टाइटल दिस टाइम इज किनिया सोनी, तो लग रहा है ना पंजाबी मिक्स काफी रहेगा इसमें। और फ्रेश प्लीज New release.

0: numbers, reviews and ratings of latest releases.
1: हिटिया मिस मी, आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस ट्रेलर जो मैंने अभी ताज़ा देखा. ये फिल्म रिलीज होने वाली है 12 जून को और ट्रेलर देख के ना मुझे बहुत अच्छा सा लगा. ऐसी फिल्में होती है ना जो शायद सुपर हिट वाली कैटेगरी में तो नहीं ही आए, लेकिन जब आप देखते हैं फील गुड सिनेमा, आपको अच्छा लग जाता है. मुझे लगता है ये उस कैटेगरी में जरूर आएगी. इट वोंट बी मिस मे बी बॉक्स ऑफिस पर, बट इट इज गोइंग टू बी श्योरली अ हिट इन योर हार्ट्स. वैसी होती है ना फिल्में, लो बजट बट नाइस सिनेमा, मुझे वैसा लगा ट्रेलर. बाकी तो खैर रिलीज पे रिव्यूज पता चलेंगे या देखने के बाद, बट ट्रेलर रिव्यू देती हूँ. तो हैप्पी सी सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली फिल्म लग रही है ये. लव स्टोरी पर खुद को ढूंढने की कहानी, प्यार से खुद को खुद से प्यार के लिए. दोस्ती की भी कहानी है, फीमेल फ्रेंडशिप्स पर यूं भी बहुत कम फिल्में बनती हैं. यहाँ हीर और सारा की कहानी है, दोनों एकदम अलग हैं. उनके स्ट्रगल्स, डर, सपने सब अलग. एक सफर पे साथ निकलती हैं या मिल जाती हैं, हर सफर साथ में होता है. अब एक सफर उनका साथ में किया हुआ कैसे आपको उससे मिला देता है, जिसके बहाने हम खुद से मिल जाते हैं, उसकी कहानी है. वो लवर हो हमेशा लाइक इन इम्तियाज अलीज़ फिल्म्स, ये जरूरी कहा, दोस्त भी तो बन सकता है फॉर लाइफ. अच्छा सा ट्रेलर कहीं कहीं रिलेटेबल कहानी लिए लगता है, हमारी जिंदगी से जुड़ी कहानी, हमारे इमोशंस की. जहां कभी हम स्टक महसूस करते हैं लाइफ में, तो कभी मिसअंडरस्टूड सा, कभी अपनी और अपनों की उम्मीदों के बोझ तले दबे भाग सा रहे होते हैं, तो कभी एक नई शुरुआत के लिए तरस रहे होते हैं. नहीं, इनमें से कुछ भी है ना अगर हमारे साथ, आपके साथ, तो आप रिलेट शायद कर पाएंगे. ट्रेलर तो यही प्रॉमिस करता है. दो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स प्लेड बाय पात्रलेखा एंड श्वेता सालवे, जो कि सुपर हीरो नहीं है, इम्परफेक्टली परफेक्ट है, रियल है. जिंदगी से जूझती, संभलती, गिरती और फिर से उठ के ग्रो करती लाइफ की कहानी. मुझे ये ट्रेलर क्यूट लगा, वार्म लगा, ऑनेस्ट लगा और इंस्पायरिंग भी लग रहा है. लग रहा है कि देखी जानी चाहिए ये. आई वुड गो ऑन दिस रोड ट्रिप विद हीर एंड सारा एंड बी अ पार्ट ऑफ देयर सेल्फ डिस्कवरी. क्या मालूम मुझे खुद को और ढूंढने में कुछ थोड़ी और आसानी हो जाए.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉटर ट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉटर कैशबैक भी. और इतना ही नहीं, एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
6: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
7: सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: दोस्ता।
1: Today's trends and trolls, कुछ सीधी बात कुछ गोलमोल।
2: मैं ते बस फॉलो करता, मैं ते बस फॉलो करता।
1: मैं तो बस फॉलो करती और आप लोगों से शेयर कर दी थी कि आज के कुछ चर्चा फुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। तो भाई यहाँ तो सबसे पहले हैशटैग बैंक ऑफ कनाडा, क्योंकि होल्ड कर लिया उन्होंने इंटरेस्ट रेट एट 2.25%। ऑल्सो ट्रेंडिंग एंड ट्रोलिंग इज बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है टिफ मैकलिन, उनका स्टेटमेंट जहाँ ही सेड कि उन्हें नहीं लगता हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है। ये जरूर माना कि कुछ कमजोरियां हैं, कर लो बात। वेल, फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव टाइम इट्स इंटरेस्ट रेट इज ऑन होल्ड, जिसकी उम्मीद भी वैसे की ही जा रही थी। देन ट्रेंडिंग इज हैशटैग कुस्मा ऑन ट्रेडर, जिसे ट्रंप ने रिन्यू करना नकार दिया। कहा जो भी कनाडा या मेक्सिको के पास है वो यूएसए को चाहिए ही नहीं। भाई हाँ, यूएसए के पास वो सब है जो कनाडा और मेक्सिको को चाहिए। तड़ी रे तड़ी, अड़ी ही रही। देखा गया है ना, रस्सी जल जाती है कई बार, पर एंटन वो रहती है वहीं की वहीं। वेल, नुकसान इससे हो सकता है काफी। उधर ट्रेंडिंग इज ऑल्सो हैशटैग डिजिटल सेफ्टी बिल, हमने इसके बारे में भी कल बात की थी। आज फेड सरकार ने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड इट्स टेबल फॉर इट्स फर्स्ट रीडिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, लेजिस्लेशन को जिससे में 16 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया पर बैंड रहेंगे और AI चैट बॉक्स से भी सेफ। दिस कंसिस्ट्स ऑफ डिजिटल सेफ्टी एक्ट एंड डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कैनेडा एक्ट। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है जो मॉनिटर एंड एनफोर्स करेगी रूल्स को। अभी इस पर डिबेट होगी, अगर मेजॉरिटी वोट मिल गई इसे तो फिर कमिटी रिव्यू के लिए जाएगा। पेनल्टीज क्या होंगी, क्या पेरेंट्स को और ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, इन पर अभी सवाल है। देन ट्रेंडिंग इज ऑल्सो हैशटैग बिली बिशप, क्योंकि फेड सरकार ने यहाँ ऑफिशियल पब्लिक कंसल्टेशन लॉन्च कर दिया है ऑन द पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ दिस एयरपोर्ट। अब ये मूव प्रोविंशियल और फेड सरकार के बीच जो ज्यूरिसडिक्शन बैटल है उसका नतीजा है ओवर द फ्यूचर ऑफ दिस एयरपोर्ट। देन ट्रेंडिंग इज हैशटैग एंथ्रोपिक, क्योंकि क्लॉड फेबल 5 एक पावरफुल एडवांस्ड AI एजेंट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसकी कैपेबिलिटीज कह रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसको हम टेक सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। देन ट्रेंडिंग इज फीफा, इस फ्राइडे को टोरंटो में पहला फीफा मैच होगा, टोरंटो में पहला होगा, पहली बार होगा कैनेडियन सॉइल में जिसमें कैनेडा खेलेगा। एक्साइटमेंट इज क्वाइट हाई। देन ट्रेंडिंग इज PM मोदी जी जो भारत के हैं, उसके बारे में हमने बात भी की, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड PM का। और ट्रेंडिंग इज हैशटैग ईरान US वॉर अगेन, जहां पे ट्रंप ने ईरान को और हमलों की धमकी दी है, क्योंकि बैक एंड फोर्थ अटैक से ट्रूज डील को धमकी मिल गई है। देन ट्रेंडिंग इज मौसम, खासा है गर्म, बट देन देयर आर चांसेस ऑफ बरसात आज शाम रात एंड कल।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: घर कहीं भी लेना हो

0: फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844 दैट्स 6478648844
1: और विजिट teamsabarwal.com
2: योर सर्च एंड्स हियर.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: Another Don clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: Retro in Metro. Nukkad Club.

Well, this gana from Marjawa is again a scene of, आप कह सकते हैं जब flop met hits. A film flop थी, गाना hit रहा. पर जो hit भी रहा, वो भी अपनी originality के बूते पे नहीं रहा. पुराने hit classic को नया outfit पहनाकर परोसने के ऊपर रहा. और ये हिट क्लासिक ओरिजिनली था 1986 की हिट फिल्म जाबा से. वी ऑल नो दैट फिल्म फिरोज खान की थी, पर जो इसका टाइटल था वो सलीम खान ने इसको दिया था. बट ये फिल्म ना उस टाइम के हिसाब से काफी बोल्ड फिल्म थी एंड वॉज कीनली इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रेगरी पेक एंड जोसेफ कॉटन की 1946 की क्लासिक ड्यूअल इन द सन. आपने अब तक नहीं देखी तो वाली देख डालें, आपको जाबाज बहुत ज्यादा सिमिलर लगने वाली है. बात हो रही थी इस क्लासिक गाने की, जो जब भी आया, जिस भी फिल्म में आया, हिट ही रहा. जैसे कि इस बीच ये फिल्म थैंक यू में आया, वो भी फिल्म तो फ्लॉप रही पर ये गाना हिट हो गया था. बताओ कौन सा वर्जन? ये वाला.

प्यार दो प्यार लो और बेचैन दिल ठरकी हो।

रिमाइंडर, हर थर्सडे एट 6 PM हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है और सुनाएंगे एक नई कहानी. दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय माय रियल को द रियल स्टेट कंपनी. माय प्रॉपर्टी माय चॉइस माय रियल को. सुनिए कैसे रही.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। फायदा उठाएं जून के हॉटर ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉटर कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स rjswati_Toronto।
5: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

सावन में आग लगाते लगाते गंदीबाद की 440 वोल्ट वाली पुंगी बजाते बजाते मीका सिंह की आज की पार्टी भी है उन्हीं की तरफ से। कॉज इट्स हिज बर्थडे गाइस, फिल्मी नुक्कड़ पर इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स बाय मीका सिंह, लाइंड अप नेक्स्ट।

CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी. एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं. हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और. आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कंटेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें rjswati_toronto. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 6478305042. दैट 6478305042.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
4: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
3: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

और बढ़िया। वेल गाना था बहुत बढ़िया। टू स्टेट्स का ये गाना था, पंजाबी पंजाबी टाइप का ट्रैक जो चेतन भगत के नॉवल पर फिल्म बेस्ड थी। कुछ कहानियां मैं कहती हूँ होती ही औसम है कि नॉवल भी फेमस हो जाते हैं उनकी और जब जब उन पर कोई नाटक या फिल्में बनी हैं वो भी हिट हो जाती हैं। अब शरद चंद चट्टोपाध्याय की ये फिल्म ले लो परिणीता। जब 1953 में उस पर फिल्म बनी थी विद मीना कुमारी एस परिणीता, ललिता वाला रोल, और शेखर थे अशोक कुमार उसमें। बिमल रॉय ने बनाई थी और उन्हें भी अवार्ड मिला था, साथ में मीना कुमारी को भी अवार्ड मिला था। फिल्म वाज बॉक्स ऑफिस सक्सेस एज वेल, इंक्लूडिंग उसके गाने। एंड देन इन 2005 हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, जून 10 को ही व्हेन विद्या बालन एंड सैफ अली प्रदीप सरकार की परिणीता रिलीज हुई थी एंड दैट मार्क्ड विद्या बालन का सक्सेसफुल डेब्यू भी। गाने फिल्म के सारे हिट हुए थे। दिस वन इज माई फेवरेट।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशेलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबोरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स द It deserves.
4: नटवर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती
5: मगर क्यों पिताजी नहीं माने क्या
4: वो बात नहीं है हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा
3: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा रेडियो CMR एट 5 PM योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
0: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

0: ये मैं खाना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलान, बैड बॉय, खराब आदमी। ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं। मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं।
1: वैल इसे तो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, कहते हैं ना कमाल ये है पर मुझ में कोई कमाल नहीं। ऐसा तो वही लोग बोलते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, अपनी कला को वो बड़ा नहीं मानते लेकिन होती बहुत बड़ी है। ये जो डायलॉग आपने सुने, सिग्नेचर स्टाइल, सिग्नेचर आवाज थी यस्टरडेज़ के एक्टर जो शुरू में इन 50s मोस्टली नारद मुनि के रोल में ही आते थे इन ऑल माइथोलॉजिकल मूवीज ऑफ दैट टाइम। जानते हैं कितनी बार नारद मुनि के रोल किया था इन्होंने? पूरे 49 times। मैं बात कर रही हूँ जीवन की, जिनकी आवाज थी। एंड देन लेटर इन 60s, 70s and 80s ही वॉज अ वेरी पॉपुलर विलन, जैसे कि आपने इनकी डायलॉग्स में भी सुना कि उन्होंने उस तरह की एक स्टाइल स्टार्ट करी थी कि वही विलन हंसाता भी है, वही विलन विलनगिरी भी करता है। कहते हैं कश्मीर की बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे ये, जहाँ पे इनके दादा एक्चुअली गवर्नर थे। अब ऐसे में फिल्मों में काम करना तो उस वक्त बहुत ही बड़ा एक नो कहा जाता था फैमिलीज में। तो बस फिर क्या था, इन्हें तो करना था, तो ये घर से भाग निकले और वो भी एट द एज ऑफ जस्ट 18 मुंबई आ गए विद ओनली 26 रुपए अपनी जेब में लिए। उसके बाद शुरू हुई स्ट्रगल और एक छोटी सी जॉब मिली जैसे तैसे एज अ रिफ्लेक्टर, जो स्क्रीन पेपर पर उस रिफ्लेक्टर पर स्क्रीन पेपर चिपकाने वाली जो होती थी, छोटा सा काम था। फिर यही करते करते एक दिन एक फिल्म थी फैशनेबल इंडिया जो बन रही थी, उसके जो फिल्म मेकर थे उन्होंने उनको नोट किया और बोला कि क्या करते हो? उन्होंने कहा ये रिफ्लेक्टर पे ये चिपकाता हूँ। कहते कुछ काम करोगे एक्टिंग का? उन्होंने कहा ओके। कहते डायलॉग सुनाओ, और उन्होंने उस वक्त ही रांझा के कुछ डायलॉग्स थे वो उनको सुनाए और उन्हें बहुत पसंद आया। बस फिर तो क्या था, सक्सेस ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, अच्छे खासे नए नए आयाम देखे और नए नए स्काइज देखे। डिफरेंट रोल्स किए इन्होंने, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किए, थिएटर भी किया और सब में वो बहुत उम्दा तरीके से फिट होते रहे। Just remembering the legend today on his Punyatithi, this is Swati signing off for now, leaving you with this classic. Unki film se zarur hai, halaki is gaane mein woh nahi the. Enjoy this one. Hum milte hain phir kal.

0: 3FM
1: न्यूज के लिए हिमदाम दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमरीका ने गुज़श्ता रोज भी ईरान पर एक सख्त हमला किया था और हम आज भी उन पर सख्त हमला करेंगे। ईरानी वजारत खारजे के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उनका मुल्क बार बार होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद जंग के खात्मे के लिए होने वाले सिफारती मुजाकरात के मुस्तकबिल का असर नौ जायजा ले रहा है। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि ईरानी कौम को बमबारी धमकियों और फौजी दबाव के जरिए सर तस्लीम खम करने पर मजबूर करना नामुमकिन है। उधर पासदारा ने इनकलाब ने दावा किया है कि उसने मिजाइल इस्तेमाल करते हुए अमरीकी फौजी अड्डों के चार बड़े आहदाफ को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में सवार तमाम अहलकार मारे गए। उधर आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल जारी रही और 10 से 12 हजार मुजाहिरीन ढरीक ईदगाह पर मौजूद हैं। वफाकी वजीर कानून का कहना है कि आजाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की डोरें सरहद पार से हिलाई जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वफाकी हुकूमत का मजमू कर्ज तकरीबन 82,000 अरब रुपए तक बढ़ गया है। दूसरी जानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मई के महीने में रिकॉर्ड 4.25 अरब डॉलर की रकम मौसूल हुई है। रूस ने कैनेडा को एक जंग भड़काने वाला मुल्क करार दे दिया और बैंक ऑफ कैनेडा ने आज अपने मौजूदा इंटरेस्ट रेट 2.25% में कोई तब्दीली नहीं की। पाकिस्तान ने 74 साल के बाद पहली बार चार मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। उधर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल के बाद वनडे मैच में फतह हासिल कर ली और आज रात से गैस की कीमत में 3 सेंट पर लीटर कमी हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
3: खास खास खबरें जो बैरुद्दीन से आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 198.25 रुपये। डेबिट या ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। वहां अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज के रेट 198.25 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000। वेनेसडे राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात आप तक पहुंचाया करते हैं। डेट कंसल्टेशन के वाले से आयशा मुनव्वर साहब हमारे साथ होंगी। इंश्योरेंस की मालूमात विशाल त्रिवेदी साहब आप तक पहुंचाते हैं और आईसीसी इमिग्रेशन से एमडी भाई हमारे साथ होंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे चिर पर सामिन अदल और मीज़ान का सही मैदान तो मैदान हशर ही होगा, लेकिन इस मैदान में उतरने से पहले एक नुकता काबिल गौर है। अदब का हुक्म देने वाली ज़ात अदब के हवाले से इसके अलावा भी मसाइल के हल का एक अंदाज़ अता फरमाती है। यानी अदल करो बड़ी अच्छी बात है, अगर फजल करो तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह रब्बे करीम का इरशाद है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से ज़्यादा वसी है। गज़ब तो यह है कि इंसान को उसके अमल की इबरत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन फजल कहता है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। रहमत होती ही आमाल की इबरत से बचाने के लिए है। अगर आमाल के साथ इंसाफी होना है तो फिर रहमत क्या है? इंसाफ यह है कि जब माशरा बागी और मुजरिम हो जाए तो उसे तबाह कर दिया जाता है। पुरानी उम्मतें इसी तरह नेस्तो नाबूद हो गईं। किसी को आवाज़ ने आ लिया, कोई आंधी की जद में आ गया, किसी को रात, किसी को बर्क का अजाब दिया गया, किसी को ज़मीन निकल गई तो किसी को आसमान खा गया। लेकिन अरब का मुआशरा इस्लाम से पहले तमाम खामियों के बावजूद भी तबाह नहीं किया गया। अल्लाह मालिक है अदल का, फजल का। उसने ख्याल किया चलो इस माशरे पर रहम भेज दिया जाए, बल्कि इन पर रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया जाए। पस वमातूब माशरा मकबूल माशरा बना दिया गया, बल्कि कायनात का अफजल तरीन माशरा बना दिया गया। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेज डॉट सी ए।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। योर लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने प्यार

0: Ne hoş gelen. आपको यादगार बनाएं आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। SSR Auto Repair 3438 Shepherd Avenue East Scarborough Warden or Shepherd ka intersection 24/7 Auto Repair very close to Highway 401 tamam major repair work karte hain body shop accidental repair denting painting engine repair oil change tire change brake pads and router wheel alignment battery and AC service 24/7 towing service bhi available hai SSR Auto Repair call Nazir Chaudhary Awais Chaudhary aur Munir Hussain 647-321-744 it's 647-321-7444 बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही गोट पाए निहारी खोए वाले चने स्मोकी कीमा बटर और सेसमी नान लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी बर्थडे वेडिंग फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002
1: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374
2: जी हाँ 9058191001 राजीव तलवार साहब के रابطے का नंबर है। द मोस्ट ट्रस्टेड रेनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर हैं इन साउथ एशियन कम्युनिटी। मॉर्गेज का कोई भी मसला हो आप इनसे رابطہ कीजिए एक बार चाहे फोन पे رابطہ कर लीजिए ऑन द फोन एसेस करके आपको बता देंगे कि आपका जो केस है वो हल हो सकता है नहीं और अगर कहेंगे हो जाएगा तो फॉर श्योर फिर इसको करेंगे। लास्ट मिनट की डील्स के बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे। राजीव भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
3: बट साहब गुड इवनिंग थैंक यू वेरी मच कैसे हैं आप सब।
2: बहुत शुक्रिया। आज इंटरेस्ट रेट जो हैं वो होल्ड किया है बैंक ऑफ कनाडा ने और 2.25% पे ही रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद बढ़ जाएं कम होने के चांसेस काफ़ी कम थे लेकिन ऑन दी इंडस्ट्री साइड अगर देखें रियल स्टेट मार्केट खासतौर पर देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ओवरऑल इकॉनमी पे इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने का या कम होने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है।
3: देखिए सर पहले तो इट वाज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बारी तो नहीं बढ़ेगा और कम होने के तो अभी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए सर इन्फ्लेशन जो है सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर नीचे करने में। मार्च में इन्फ्लेशन हमारी थी 2.4%, अब हम 2.8% पे है। 0.4% जो इंक्रीज हुआ है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स अभी कोई खतरनाक नहीं है लेकिन डेंजरस डायरेक्शन में जा रहा है एंड प्राइमरली रीजन है गैस प्राइसेस। गैस प्राइसेस आज भी जीटीए में 170 के आसपास चल रही है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए सबकी एवरेज लगाएं तो ऑलमोस्ट ये गैस है। एनर्जी प्राइसेस आर ऑलरेडी टू मच एलिवेटेड बिकॉज द सिनेरियो जो वर्ल्ड में चल रही है जो वॉर की सिचुएशन चल रही है ये सारी चीजों ने इसको पुश किया है और इसकी वजह से आज तो रेट नहीं बढ़ा इसका ये मतलब कतई ना निकाला जाए कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। सब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो चेंज होगा वो वॉर की सिचुएशन के ऊपर और गैस और मेज एनर्जी प्राइसेस के ऊपर होगा जो कि मुझे नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। आई सब देखिए जुलाई में फिर है इसकी डेट मुझे नहीं लगता जुलाई में भी कुछ खास चेंज होगा।
2: अच्छा।
3: लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स आई एम प्रेडिक्टिंग, देखिए सितंबर अक्टूबर में इस साल में कम से कम दो बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 करके बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग इन द रीजन, व्हाट इज हैपनिंग इन द वॉर, यूएस के साथ ट्रेड रिलेशन में क्या चल रहा है और इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है. अभी तो इट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप. तो आगे जाके जो इसका इफेक्ट होने वाला है रियल एस्टेट के ऊपर, देखिए रेट भट्टी साहब अगर बढ़ेगा तो उसके साथ घरों की एक्विटी और कम हो जाएगी सर, डेफिनेटली कम होगी. ऑलरेडी एक्विटी नहीं है. जो भी जीटीए वेस्ट का जो टेलीफोन एरिया कोड 905 है, स्पेशली मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन, खासकर ब्रैम्पटन में कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मोर्गेज से, लगभग सारी प्रॉपर्टीज अपनी मोर्गेज की वैल्यू से नीचे है सर. यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 9 लाख, मोर्गेज 11 लाख, प्रॉपर्टी 12 लाख, मोर्गेज और ज्यादा ऊपर. तो थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, स्पेशली इन दीज सिटीज ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा, जहां पे मेरे को इतने फोन आते हैं हर रोज कि ब्रैम्पटन में लोग कह रहे हैं कि जी ब्लेंडर ने कह दिया है कि अगले बार आपकी मोर्गेज को हम रिन्यू नहीं करेंगे, टेक द मोर्गेज समवेयर एल्स. वो रिन्यूअल तक तो कुछ नहीं कह रहे हैं. जो लोग इस साल रिन्यूअल पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है टेक द मोर्गेज समवेयर एल्स, वी आर नॉट रिन्यूइंग इट. गॉड नोज व्हाट इज द रीजन. लो हम उससे बात करेंगे, मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी फाइल पे क्या हुआ था. दूसरी बात, आप ये देखिए आज की डेट में कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए. देखिए ये तो चीज हमारे बस में है नहीं, ना आप कुछ कर सकते हैं भट्टी साहब, ना क्लाइंट्स कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं. वी कैन ओनली टेल हाउ टू ऑपरेट सो दैट आप फंस ना जाए इसमें. तीन चीजें मैं बताऊंगा, अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा तो आपको बेनिफिट होगा. नंबर वन इज डेट मैनेजमेंट. अगर आपके ऊपर एक्सपेंसिव डेट है उसको कम कर दीजिए साहब, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा. मेरे पास भट्टी सब लोग आ रहे हैं $4-4 लाख का डेट लेके, 400,000 का डेट ऑन क्रेडिट कार्ड, लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मोर्गेज. दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. अगर आपकी 4 लाख की मोर्गेज है और 4 लाख का अनसिक्योर्ड डेट है, दैट यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, कैश फ्लो अपना ठीक रखिए. कैश फ्लो पे चोट पड़ने वाली है बिग टाइम, क्योंकि पैसे आप निकाल नहीं पाएंगे मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के बाद, और कम हो जाएगी. अभी लोगों के पास जिनकी इक्विटी है दे आर गुड, बट अगर आप ऑलरेडी मार्जिन पे बैठे हैं, आपने 5 या 10% पे 2021, 2022, 2023 में घर लिया था, वो लोग डेफिनेटली अपनी मोर्गेज से नीचे बैठे हुए हैं. उनके घरों की वैल्यू मोर्गेज से नीचे 110% है. उसको फिक्स करें. आपके अगर रेट रिन्यूअल पे आ रहा है आने वाले 1.5 साल में, कम एंड रीस्ट्रक्चर द मोर्गेज नाउ बिफोर द टाइम गोज अवे. और चौथी चीज फाइनेंशियल रेजिलियंस. इसको समझें कि ये कैसे आपको हर्ट कर सकती है. लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लूज देयर होम्स इन द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर. बिग टाइम प्रेडिक्शन है. देखिए साहब, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% और बढ़ा तो थिंग्स आर गोइंग टू गो इन अ वेरी डेंजरस डायरेक्शन. सो थिंग्स अगर आप अभी उसको बैलेंस करेंगे, अभी भी अगर आपके घर में कुछ एक्विटी है या उसको मूव किया जा सकता है किसी और तरह से, तो उसको रिस्ट्रक्चर अभी कराएं. रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे मेरी प्रेडिक्शन है सब सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स 0.25 करके दो बारी बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक्विटी और कम होगी और सेल एंड परचेज में और फर्क पड़ेगा. ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स है, जिन्होंने 5-10% पे घर लिए थे 2021-22-23-24 में, वो सब अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूज उनकी नीचे है और मोर्गेज का अमाउंट ऊपर है. सो थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज, टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी. कॉल बैक इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प. मैं 5 मिनट में आपको फोन पे बता सकता हूं आपके घर में आगे क्या होने वाला है ऑन द मोर्गेज वैल्यू एंड ऑन द मोर्गेज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और अगर आप डेट लेके बैठे हैं तो यकीन जानिए
2: सही. अच्छा राजीव भाई, 1 लाख आखिर से थोड़ा सा बता दीजिए कि कितनी देर पहले, अगर रीफाइनेंस कराना है या आपकी रिन्यूअल आ रही तो कितनी देर पहले कॉन्टेक्ट कर लें.
3: देखिए सर, आप हमारे पास समय नाम की तो कोई चीज बची नहीं ना, देर इज नो टाइम
2: फॉर इट.
3: वी आर देखिए कितने लोग, इतने लोग 6 महीने इस साल के बीत चुके हैं. इस साल में 2 मिलियन मॉर्गेज रिन्यू होनी थी, ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो चुकी है या उनको उठा के कहीं और फेंक दिया गया है. तो जो उनकी रिन्यूअल आ रही है आज की डेट में, वैसे ही मॉर्गेज कराने में 1.5-2 महीने लग रहे हैं सर. मेरे पास लोग आ रहे हैं, क्रेडिट ठीक नहीं है, क्रेडिट ठीक करने में 2 महीने लग रहे हैं. अगर आपकी मॉर्गेज 45 दिन में या 50 दिन में ड्यू है, वॉट विल यू डू? और अगर आप लास्ट मिनट तक वेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा, तो अगर उसमें थोड़ी गुंजाइश है, क्योंकि आज की डेट में रीफाइनेंस 80% से ऊपर नहीं होता है. इट्स अ रूल इन कैनेडा, यू कैन नॉट. एक जमाने में हम 95% तक रीफाइनेंस करते थे बट्टी साहब, लेकिन अब नहीं हो रहा है. तो अगर आप उस रेंज में चले गए तो यस डेफिनेटली घर के ऊपर प्रॉब्लम आएगी. कॉल बैक, सी इफ आई कैन हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली. 5 मिनट्स कॉल कैन सेव यू thousands and thousands of dollars.
2: Number to call is 905-819-1001, 905-819-1001. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका राज भाई, और next week आपसे बात करते हैं. Thank you.
3: Thank you. Next week बात करते हैं. Thank you listeners. Talk to you soon.
2: बहुत शुक्रिया. Thank you. Number note कीजिए 905-819-1001. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003. अमरीकी मीडिया कह रहे हैं कि ट्रंप ने डील में ताखीर से मायूस होकर ईरान पर हमला क्या है, और काबीना सिचुएशन रूम में काबीना के हमराकीन से इस ट्रंप ने मुलाकात की है. ईरान के शहरों मीनाब, सिरक और जजीरा कैश में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, और अमरीका कहा जा रहा है कि आज रात एक बड़ा हमला करने वाला है अमरीकी वजीर जंग ने कहा. इस पर आगे चल के बात करेंगे. ये वक्त है आपको लिए चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती हैं वानी.
4: न्यूज के लिए हमें दामुतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861.
5: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो. दिस इज मेवानी विद लोकल अपडेट्स. An 18-year-old charged with murder of constable of Northern Ontario has escaped from the hospital. The Liberal government's new online safety legislation would force social media platforms to block access for kids under 16. A motorcyclist has been rushed to hospital after a crash with a sedan in Brampton. US President Donald Trump said not looking to renew CUSMA, doesn't need anything from Canada and Mexico. A 24-year-old Markham man is facing charges in connection with an online child luring investigation. FIFA president defends World Cup ticket prices, saying if he's doing something wrong, then everyone in North America is doing something wrong. Ontario Premier Doug Ford challenges Trump's threat to pull out CUSMA deal. The TTC's new safety system uses announcement over the PA system to stop bad behavior. Russia called Canada a warmonger for signing a drone production deal with Ukraine. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
2: कनेडियन हेडलाइंस आपके लिए वानी पेश करनी थी. आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. अमरीकी सदर से कुछ भी बईद नहीं, उन्होंने कहा कि ईरानियों ने हमारा बेहतरीन हेलीकॉप्टर मार गिराया, उसमें बड़ा बम मौजूद था, ये खुशकिस्मत है कि वो फटा नहीं. ईरान को अब डील पर दस्तखत कर देने चाहिए, ईरान के लिए अच्छी डील है. मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योर अमरीका एक्ट पर भी दस्तखत कर दिए हैं, और वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ICE और बॉर्डर पेट्रोल के अहलकार हमारे हीरो हैं, हीरोज़ के लिए $70 बिलियन के फंड्स मंजूरी दे रहा हूँ, हमें महफूज रखने के लिए अहलकार मेहनत करते हैं. बाइडन इंतजामिया सबसे ज़्यादा करप्ट थी, हमने आज अमरीका के शहरियों को पहले से ज़्यादा महफूज बना दिया है. डेमोक्रेट्स ने अमरीका को महफूज बनाने की तमाम रोकने की कोशिश की है, कुछ भी कह सकते हैं. और ये वाली बात कि जो उसमें बम था और वो फटा नहीं, और जहाज़ तबाह हो गया, वो गिर गया लेकिन बम नहीं फटा. आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी.

मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रुबारा में, ये नाबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: ko call me lang.
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861. Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 647-838-4773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 647-838-4773.
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550.
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. द बेस्ट गोरमे पिज्जा विद बेस्ट प्राइसेस, पिज्जा पॉप 3075 रिचवे ड्राइव मिसिसागा, और विजिट pizzapop.ca. फैमिली के साथ डाइन इन करें या टेक आउट, बच्चों और बड़ों सभी की पहली चॉइस पिज्जा पॉप. लजीज और मजेदार तंदूरी चिकन पिज्जा, चीज स्टेक पिज्जा, चिकन शवरमा पिज्जा. एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफर, लार्ज तंदूरी चिकन पिज्जा, लार्ज चीज पिज्जा, टू डिपिंग सॉस, थ्री कैंस ऑफ पॉप फॉर $24.99 ओनली. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक आउट ऑर्डर कॉल 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्स रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500. और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर.
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो All Debt Solution के M सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577 GTA भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577
1: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
2: ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
0: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall you can speak to a lawyer directly call Muhammad Alam barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office no fee unless he wins your case for free advice call 416-625-2636 that's 416-625-2636
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर
4: विशाल त्रिवेदी वही जाना पहचाना नाम लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस कॉल विशाल त्रिवेदी एट 647-767-9852 दैट 647-767-9852 Vishal Trivedi.
5: जी हाँ 647-767-9852 विशाल त्रिवेदी साहब के नाते का नंबर है वेरी प्रोफेशनल वेरी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम इसी बिजनेस में हैं इंश्योरेंसेस के हवाले से फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से कोई भी मशवरा लेना हो आप एतमाद के साथ इनसे रब्ता कर सकते हैं 647-767-9852 हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदेद कहेंगे विशाल भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो
6: Thank you, Bhatiji. It's always a pleasure to be with you and regards to all our listeners.
5: Thank you very much. Bahut shukriya. State planning jo hai, ye bada important aajkal ho gaya hai. Pehle isse bahut zyada tawajjuh di jati thi, lekin abhi zahir hai, jab paise zyada aa jate hain to bahut sari cheezein aur jo hain, wo samne aa jati. Lekin jo life insurance ka role hai state planning mein, wo kya hai? Main chahunga thoda sa is hawale se hamare listeners ko guide kijiye.
6: Thank you, Bhatiji. स्टेट प्लानिंग भतीजी एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप स्टेट प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारी फैमिली सफर करती है तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज स्टेट प्लानिंग सो स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि आपकी सारी जायदाद आपके सारे इन्वेस्टमेंट आपके सारा जो भी लिक्विड कैश है जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो सारे स्टेट में रहते हैं इफ समथिंग हैपन्स टू अ पर्सन व्हाट हैपन्स टू दोज एसेट्स इन योर स्टेट वेल हमें लगता है कि वो तो हमारे लव्ड वन को फैमिली को चले जाएंगे द आंसर इज नो नो इट विल नॉट गो इफ यू हैव नॉट डन योर स्टेट प्लानिंग इट विल नॉट गो बिकॉज यू विल आपकी फैमिली को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जमीन जायदाद उनसे बिलोंग करती है, वो इन्वेस्टमेंट उनसे बिलोंग करते हैं। तो पहला जो टूल है स्टेट प्लानिंग का, अगर आपके पास में विल नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप विल बनवाएं अपनी। सो द रोल इज लाइफ इंश्योरेंस स्टेट प्लानिंग में एक सेफ्टी का काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास में इन्वेस्टमेंट है, 4-5 घर लेके बैठे हैं आप, इन्वेस्टमेंट इतना रखा हुआ है आपने और वो फैमिली को जाता है और वो आज से 10-20-30 साल के बाद जा रहा है। When you transfer those assets to your loved one through your estate, and you are not there anyway, so person is gone, and ये process चल रहा है transfer होने का, तो उसमें सबसे बड़ा जो obstacle है वो है taxes. वो जो capital gain taxes हैं, वो कौन pay करेगा? Well, CRA बोलेगी कि आप जो भी इसके beneficiary हैं, पहले आप tax pay करो, तब हम आपको ये नाम पे करेंगे आपके। अब वो कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे? वो बेच भी नहीं सकते क्योंकि अभी वो मालिक नहीं बने उसके। Here, life insurance kicks in. Life insurance का जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलता है, बाईपास करता है स्टेट को। उस पैसे को, टैक्स फ्री पैसे को आप यूज करते हैं, सीआरए को पैसा देते हैं, सारी जमीन जायदाद अपने नाम कराते हैं, एंड यू बिकम द राइटफुल ओनर ऑफ द स्टेट।
5: वेरी राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 6477679852, 6477679852। अच्छा ज़ाहिर है ये इफेक्ट तो पूरी फैमिली को करेगा, तो किस तरह से ये फैमिली की एवरीथिंग इसमें चेंज कैसे हो जाती है, किस तरह उसको किस तरह से फिर इफेक्ट करता है?
6: देखिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी स्टेट पे और आपकी स्टेट के साथ में आपकी फैमिली पे। एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है और लाइफ इंश्योरेंस है तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाती है। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस को आपकी लाइफ इंश्योरेंस ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बदल दिया, एंड देन इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल फ्रीडम टू योर फैमिली। उस इमोशनल टाइम पे दे शुड नॉट बी सफरिंग टू टेक ऑल द एसेट्स एंड उसकी जो प्रॉब्लम जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर वो सफर करके एंड दे आर ट्राइंग टू प्रूव एंड दिस एंड दैट। व्हाई वेस्टिंग सो मच टाइम एंड गोइंग थ्रू सो मच ऑफ सफरिंग, वेदर यू कैन हैव अ प्रॉपर स्टेट प्लानिंग एंड वी कैन ऑलवेज स्टीयर यू टू द राइट डायरेक्शन विद राइट लॉयर्स। हमारे पास लॉयर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे विल बनाने में।
5: अच्छा,
6: एंड Yeah, they guide you, and same time we will have a proper analysis of your needs, and we can recommend you कि आपको ये insurance लेना चाहिए, इतने आपको taxes की possibility है, और वो tax cover होंगे, and everything will be smoothly transferred to your family, and your family won't suffer.
5: जिंदगी है, इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, बाज़ुकात नहीं ले पाता लाइफ इंश्योरेंस, एज बढ़ जाती है, तो कोई विंडो अवेलेबल रहती है? ज्यादा उम्र के लोग भी ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस?
6: 100% वी हैव 80 प्लस को भी हमने लाइफ इंश्योरेंस दिया है, हमने लाइफ इंश्योरेंस को भी दिलवाया जिनकी बहुत ज्यादा इश्यूज थे मेडिकल। There are options available, person to person, individual base पे होता है, but you know, 99.9% there is a very good possibility we can get you insurance even if you have any condition, absolutely.
5: Very right. मतलब सामीन, अगर आपने इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, स्टेट प्लानिंग के हवाले से, नंबर आप नोट करके राबता करें, मशवरा करें, 6477679852, 6477679852, vishaltrivedi.ca इनकी वेबसाइट है। विशाल भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते आपसे
6: ऑलवेज प्लेजर भट्टी जी, थैंक यू, रिगार्ड्स,
5: बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कीजिए, 6477679852। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, 24 घंटे हमारे नशात radiopakistan.fm पे सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। हमारा रेडियो प्रोग्राम आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे लाइव भी देख सकते हैं। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, क्वालताला भट्टी, 6472957861। आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, असाइन करना है, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेक्स्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में उसे ऐड कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए, तालाब भट्टी, 6472957861, 6472957861। लिए चलेंगे आपकी न्यूज की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
7: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
8: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکون ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکون ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکون ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ روز بھی ایران پر ایک سخت حملہ کیا تھا اور ہم آج بھی ان پر سخت حملہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ معاہدے کا کیا ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے قریب ہیں لیکن تہران ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مجھے شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ماضی میں ان کا بیوقوف صدور سے پالا پڑتا رہا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی سینٹرل کمان کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں اور ایران کے شہر میناب، سرک اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تشدد کو بڑھاوا دینے والی امریکی حکومت نے آج الصبح جسک، سرک اور قشم کے کئی مقامات پر حملے کیے جس کے نتیجے میں سرک میں ایک مواصلاتی ٹاور کو نقصان پہنچا اور